0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी।

0: न आहे ॻाल्हियूं शुरू थी वियूं आहिनि।
1: सदर आसिफ अली ज़रदारी सां वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म सदर खे तारीख़ी दिफ़ाई मक़ा मुआदे खां आगाह कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी दिफ़ाई मुआदे लाइ नेक ख़्वाहिशुनि जो इज़हार कंदे वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सैद आसिफ मुनीर जे कोशिशुनि खे साराहियो। फ़ौज ऐं क़ानून लागू कंदड़ इदारनि जे पेशवारनि सलाहियतुनि खे ख़राज तहसीन। मुल्क मां दहशतगर्दीअ जे नासुर खे मुकमल ख़ात्मे जो अज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी मौजूदा इलाक़ाई सूरताल खे नज़र में रखंदे अवाम खे रिलीफ ॾियण जी ज़रूरत ते ज़ोर भरींदे चयो त आम वाइपे वारनि शयुनि जी बिना रंडक जी फराहमी ऐं मुनासिब अघ ते दस्तियाबी यकीनी बणाई वञे।

0: आज़ादी जे सेंचुरी मल्हाईंदासीं। आज़ादी रुगो सरज़मीन हासिल करण जो नालो न पर पाकिस्तान जे माण्हुनि सां हक़नि जो वाइदो हो, उन्हनि इलाइक़नि ऐं रियासतुनि सां वाइदो हो जिन पाकिस्तान सां गॾजण जो फ़ैसिलो कयो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो जशन आज़ादी जे मौक़े ते वीडियो पैगाम। बिलावल चयो त आइन में लिखियल वाइदे खे बार बार वरजाईंदा बि आहियूं पर सदाई निभाईंदा न आहियूं। नौजवाननि खे इज़त जो रोज़गार मिले, मिन जी कमाई सां घर हले ऐं मोट जो एतराम थिए। हू चाहिनि था त हर इलाइक़े खे पाकिस्तान जी तरक़ी में पंहिंजो हिसो मिले।
1: सिंध में सूबे जी का ॻाल्हि नई न आहे। सिंध असेंबली उन ख़िलाफ़ केतिरा ई भेरा ठहराउ मंज़ूर करे चुकी आहे। सिंध विरिहाइण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ पाण में विढ़ी पवनि था। सिंध धरतीअ जो पाणी सूबे खे नुक़सान पहुचाइण न ॾींदो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी मज़ारे काए ते मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त जेकॾहिं कंहिंखे सूबे बाबति एडवेंचर करणो आहे त सिंध असेंबली में ॿ भाङे टे जी अक्सरियत सां ठहराउ मंज़ूर कराए। जी डी ए ऐं फंक्शन लीग बि तारीख़ जो हिसो थी विया, हाणे अॻिते वधणु घुरिजे।
0: पेट्रोल पंप मालिकनि जो मुतालबो मंज़ूर। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर जो फी लीटर मार्जन 1.34 रुपया वधाए छॾियो। डीलर जे मार्जन में वाध खां पोइ 9.98 रुपया फी थी वियो। नाड़े वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जे सदारत ते ई सी सी जे इजलास में पेट्रोलियम डिवीज़न नज़रसानी समरी पेश कई। पेट्रोलियम डीलर्स पारां फ़ैसिले जी आजियां।
1: थर घुमण लाइ वियल सयान जे ॿिनि मोटरसाइकिलनि में खौफ़नाक टकर। मलकाणी शरीफ़ वासी चार ॼणा अजल जो शिकार। हिकु ज़ख़्मी मिठीअ वेझो सनाया सर वटि। हादसे में रेवश कुली महिराण शोभा
2: सुनाए के तुम भी जा रहे हो, क्या जाना जरूरी है आज मजबूर हो।
0: मदई जी भरिसां संगावती तकरार तां जहिड़ो फायरिंग में हिकु ॼणो क़तुल, ॿ औरतुनि समेत पंज ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ टंडो बार में खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़े दौरान नौजवान गुल मोहम्मद उर्फ़ राजा खोसो मारिजी वियो। बाबू खोसो, अब्दुल्ला खोसो, गुलन खोसो, मसमात, ज़रीना खोसो ऐं आमना खोसो ज़ख़्मी। मेहड़ भरिसां शाह पंजो थाणे जे हदि में ॿ ॾींहं अॻु जहिड़े में ज़ख़्मी थियल ॻोठाणो फौत। लाखिर बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़े सबबि ज़ख़्मी थियल लुकमान लाखे इलाज दौरान दम ॾेई छॾियो। ॿिनि ज़ख़्मियुनि जो इलाज जारी।
1: टंडरोल यार में पुरसरार तौर गोली लॻण सबबि नींगरी मारिजी वई। क़तल जो शक ज़ाहिर। वारसन वाके खे इतफ़ाक़ी करार ॾेई छॾियो। जना टाउन में गोली लॻण सबबि सोरहं वरियनि जी फरवाह मारिजी वई। जॾहिं त वारसन जो चवणु आहे त नींगरीअ जो मौत इतफ़ाक़ी।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
5: अस्सलाम वालेकुम। अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न थो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
5: न अदा
7: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी।
8: 0301

0: 3992836।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Club per Atmat. Aimba Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर. सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो. कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर. राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120.
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट. बार बार वेक्स और शेविंग से निजात. नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज. अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ. आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569.
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
4: उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-2724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुधा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 0301-3992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

यमन जे शहर अल मफातिते होसिन जो हमलो बिन सिक्योरिटी अलकारन समेत 6 जणा मारिजी विया। यमनी हुकूमत जे फौजी उहिदेदार चयो आहे त हुसी बागेन बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी बेड़न ते 5 मिज़ाइल फायर कया। बिन जहाज़न खे बाहि लॻी वई। हमले में बिन सिक्योरिटी अहलकारन समेत 6 जणा मारिजी विया। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर औरत समेत बिन जणन जा लाश हथ छाछरो वेझो घर के कमरे में औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लगल लाश मिलो है सखर।

0: कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम,
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंडीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर के रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फील्ड मार्शल जी कोशिश के साथ आयो फौज है कानून लागू करना इदारन जी पेशावरान सलाहियत के खराज ते सीन मुल्क मां दहशतगर्दी जे नासूर जे मुकमल
2: मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबना हर्मुज़ खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण जो बि ऐलान कंदसि। व्हाइट हाउस आबना हर्मुज़ बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो।

अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कई हुई, जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरें वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि। तहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। यमन जे शहर अलमकाते होसियुनि जो हमिलो, ॿिनि सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। यमनी हुकूमत जे फ़ौजी उहिदेदार चयो आहे त हुसी बाग़ियुनि बंदरगाह ते सामान लाहींदड़ बहरी ॿेड़नि ते 5 मिज़ाइल फायर कया। ॿिनि जहाज़नि खे बाहि लॻी वई। हमले में ॿिनि सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणा मारिजी विया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻोणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो, मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साराह। ISPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻोणे फ़ौजियुनि जे सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻोणे फ़ौजियुनि पारां बि अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद, अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदारु जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाउ।

नसीराबाद के मुख्तलिफ शाखन में ज़रई पानी की खोट, बिजली की लोड शेडिंग ए बदमनी खिलाफ JUI जो एहतजाज। काठिया मोहला का रैली कढ़ी अर्थर शाख के पुल वट धरणो हयो वयो। अगवाणन चयो तो ज़रई पानी की खोट सबब आबादगार परेशान आहिन। शहरन का फुरूं भी रोज जो मामूल बनल आहिन। आबादगारन के पानी वेही अमुन बहाल करायो वञे। बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में आबादगारन जो पानी खोट खिलाफ एहतजाज। आपाशी ऑफिस आलू धरणो हिन रो माइनर के आबादगारन पानी खोट खिलाफ एहतजाज करे धरणो हो। आबादगारन है तो शाखन में पानी खोट सबब फसल सुकी रहा है। पानी फराम करे जराए ते जिंदगियों बचाई वजन। सिंध के मुख्तलिफ शहर औरत समेत टिन जणन जा लाश हथ कया। छाछरो वेझो घर के कमरे में औरत कविता मेघवाड़ जो फाओ लगल लाश मिलो। सखर के सिटी पॉइंट बायपास वटा कीर्तर केनाल में नामालूम शख्स जो लाश हथायो है जिनकी सुणप नथी सकी है। सखर बैराज में भी एक जणे जो लाश मिलो है, सुणप नथी सकी।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ते जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream.
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 0300-338-5569।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8196-801
1: छो परेशान आई
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मिरापुर राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जल्द आबना हरमुस के आमेर की लायको करार देने जो भी ऐलान कंदस। व्हाइट हाउस आबना हरमुस बाबत सदर ट्रंप के बयान के मजाक करार दे छो। अमेरिका से गालिन की बहाली जो फैसलो ना कयो। पैगामन की डेवट गालियों ना हूंदियों। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची है त इस्लामाबाद मुफाहमत नामे में जंग बंदी न पर जंग के खात्मे की गाल थी हुई जैसे अमेरिका भनकड़ी कई। अमेरिका से राबतन लाए पेरे वारा राबता हाँ मुयसर न रहा। तेहरान अमेरिका से राबतन लाए वक्ती रस्तो तैयार कर रो है जो बाद में मुस्तकिल रस्तो भी थी सके तो। यमन के शहर अलमकाते हुसैन जो हमलो बिन सिक्योरिटी अहलकार समेत छह जणा मार जमनी हुकूमत की फौजी अहदेदार है तो हुसी बागेन बंदरगाह से सामान लाहिंदर बहरी बेड़न से पंज मिजाइल फायर कया। बिन जहाजन के बाह लगी वही हमले में बिन सिक्योरिटी अहलकार समेत छह जणा मार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारा अगोणन फौजन के मान व्याज आणे मुल्की दिफा लाए कयल खिदमत की सारा। एस पी आर मौजूद फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारा डिनल आजियाणे में अगोणन फौजी सरबराहन समेत वे अंग में रिटायर्ड ऑफिसर जवान शरीक किया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफा लाए कयल खिदमत से संदन वाखाण कई। अगोणन फौजन पारा अस्करी क्यादत के एतमाद जो इजहार। कौमी इतिहाद अमुन खुशहाली लाए किरदार जारी रखने वाले अजम जो वर्जाओ।

एनडीएमए चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। एनडीएमए चेयरमैन पारा वजीर आजम के मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर आजम पारा एनडीएमए के सूबन से सहकार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ चयो तो मुतासिरन के सहूलतू फराहम कई वन।

कराची जी अदालत में नौजवान व्यापारी मीर रजा के सीबुधड़ी संदस भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी जमानत में वाद जांच में सहकार करण जी हिदायत वकील जबरान नासिर चयो आहे त पुलिस इन वक्त ताईं मोहम्मद अहमद के जवाबदार नामजद नाहे कयो जवाबदार नामजद करण खां सवाइ गिरफ्तारी मुमकिन नाहे वाके वारी हंद तां कुझ वधीक शाहिदूं मिलियूं आहिनि मीर रज़ा जे क़तल ख़िलाफ़ वालिद न पर नौजवान एहतजाज करे रहिया आहिनि मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहिनि था।

नसीराबाद के मुख्तलिफ शाखन में ज़रई पानी की खोट, बिजली की लोड शेडिंग ए बदमनी खिलाफ जेयूआई जो एहतजाज काठिया मोहला का रैली कढ़ी अर्थर शाख के पुल वट धरणो हयो वो अगवाणन चो तो ज़रई पानी की खोट सबब आबादगार परेशान आन शहरन का फुरू भी रोज जो मामूल बनल आबादगार के पानी दई अमुन बहाल कराया वे।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए, आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 0301-399-2836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-15-5-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ, बहुत ज्यादा बातों के साथ, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी गानों के साथ, और आप लोगों के साथ होंगी जी बातें, गपशप और मस्तियाँ। ओके जी, सो रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ साथ मजे करने के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो और शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो बताएंगे जी क्या तरीके कार होने वाले हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के इस्तेमाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के इस्तेमाल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। और आगा से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत ही खूबसूरत सी नात के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सी नात हम अपने प्रोग्राम के आगाज में स्टार्टिंग में लगा देते हैं, उसके बाद हम जैसे ही मुखातिब आप लोगों के पास होते हैं तो बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नाम मस्ती, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरे 3 बजे तक।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी नात यहाँ पर आपने एंजॉय करी, इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती, आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे जनाब, किस तरह आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो बताएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है उसकी जाने भी आ जाते हैं। तो आज का जो सवाल होने वाला है प्रोग्राम का वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने मुझे बताना है, हर एक इंसान की ना एक आदत होती है, यानी कि वो एक एक बात के ऊपर जो है ना एक लफ्ज़ बोलना उसकी आदत हो जाती है, बार बार एक लफ्ज़ को दोहराते रहते हैं। कई मरतबा तो कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि वो एक लफ्ज़ को इतनी मरतबा बोलते हैं कि फिर वो खुद ही सोचते हैं कि भाई ये वर्ड मैंने आखिर इतने टाइम में कितनी दफ़ा बोला होगा। जैसे मेरी आदत होती है कुछ लफ्ज़ में बार बार रिपीट करती हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही आज आपने मुझे ये बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो कि आप बार बार बोलते हैं और वो आपकी आदत है, आप जानबूझ के नहीं बोलते लेकिन वो बस बोल जाते हैं। ओके जी, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है, पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाएंगे। बिल्कुल जी, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हो सके और बहुत सारे लोगों को हम बता सके कि यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए ऐसा कौन सा वर्ड, ऐसा कौन सा लफ्ज जो कि बोलना आप लोगों की बहुत ज्यादा वाली आदत है। ओके जी, सो प्रोग्राम तो भाई सुना जा रहा है, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, तमाम तो लोगों को वेलकम करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब आप हमें ज्वाइन कीजिए जनाब 8881 और फेसबुक पर। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जीत जाएंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहेंगे और हमारा साथ देंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क, आप सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती।

0: It's 1:30.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

आपको पसंद है तो आप हमें फरमाइश भी कर सकते हैं. तो चलिए जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और यहाँ पर जो है ना आप हमें ज्वाइन करते जाएंगे. आपके मैसेजेस तो बिल्कुल मुझे मिलते जा रहे हैं जो कि हम शामली प्रोग्राम रखेंगे. लेकिन मैं क्या सोच रही थी, ये बात है बिल्कुल, अगर ऐसा वाला सीन हो जाता है ना, यानी कि एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई हमें ना अगर स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो मैं इतनी इतनी बातें करती, ये भी बोलती, वो भी बोलती, ये भी बात ही हाँ बतानी आप लोगों को. लेकिन जब स्पॉन्सर्ड नहीं होता तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैंने क्या बातें करनी है. ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर देती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ. चले कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, आप लोगों के साथ बातें करेंगे. और पैनल पर यहाँ पर आपके मैसेजेस हैं जो कि आते जा रहे हैं, तो जी आते जाइए और आपको वेलकम कहते हैं. यहाँ पर सादिया अली हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुकी हैं. सादिया अली क्या कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून, आप ही बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं. अब्दुल रशीद लाखेर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है. हिदायतुल्लाह अहमदानी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं. मीर बालाच बिरोही हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम. और सादिया कहती हैं यहाँ पे ये पोइट्री है, कुछ लोग जिंदगी से चले तो जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते, उनकी आवाज उनका अक्स हमेशा दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहता है. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा से जो, हाउ आर यू, हो फाइन बेटा, यस आई एम फाइन, आप बताएं कैसे हैं. और उनके अलावा निदड़ी भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद, कहती हैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हम हैं हम, वालेकुम अस्सलाम. समझने में थोड़ा टाइम लग गया, वेलकम कहती हैं आपको भी हमारी प्यारी निदड़ी. और सादिया कहती हैं टॉपिक मेरी आदत है, वर्ड आप ही बोलते हैं, लड़कों के साथ बैठे, भाइयों के साथ बैठे तभी आप ही बोलेंगे. उनके अलावा हजार खान जतो हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम. उनके अलावा जी निदड़ी कहती हैं टॉपिक मैं तो तौबा ज्यादा बोलती हूँ, बात बात पर तौबा तौबा करती हूँ. क्या बात है, ये वैसे अच्छी बात है, तो तौबा तौबा किया करें तेरा तौबा तौबा. अच्छा उनके अलावा कहती पूरा वर्ड हाय अल्लाह तौबा, चलें ये ठीक है, ये ठीक है. उनके अलावा हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, अब तो मैं दोबारा ब्लैक हो जाऊंगा, चलते का नाम मस्ती. नहीं नहीं आप टेंशन ना ले, आपके गोरेपन का बंदोबस्त कर देंगे हम. और हमदुल्ला मला खेल कहते हैं अपना हर काम ईमानदारी और नफासत से करें, क्योंकि आपका काम सिर्फ आपका मुस्तकबिल ही नहीं बल्कि आपकी शख्सियत भी बनाता है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा. और ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाएंगे.

और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगी। मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस हैं, जाने की आप लोगों के साथ बातें की जाएगी। उनके अलावा पोस्ट के तमाम ज्यादा का ज्यादा लाइक और शेयर कर हलो मुख्य बुधायो पे आज तुम कोई अड़ो वर्ड जो तुम बार बार गालाइंदा हो तुम्हें ढी आदत हो लफ्ज गालाइण की वो कड़ो लफ्ज है तुम बुधायो पाया। और हमारे साथ ही हमदुल्ला भाई कहती है अस्सलाम वालेकुम। हमदुल्ला मला खेल हमें सुन रहे हैं फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू शो। आपको भी वेलकम कहा जाता है प्यारे भाई। स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर है स्मार्ट भा खिचू था भली करे आया। उनका अलावा बिल्कुल तमाम जो गालियों आहन। अच्छा किशोर भाई कहते हाँ असा लाए ही दर कदे बंद कंदो बुधाय छड़ो तो तैयार थी वनो अला या खबर कोनी अन्या मुके देसू ता थोड़ो थोड़ो अगे ते हली हाली तो खुलियल आ तो फायदो हासिल कयो। उनका अलावा ही गानो हलायो आ गानो एंजॉय करना से सो हाँ जी फरीहा परवेज की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना है। इस गाने को एंजॉय कर लेते हैं जरा। और भी मजे मजे के गाने हमारी लिस्ट में हैं, तो म्यूजिक लिस्ट एंजॉय करेंगे और आप हमें ज्वाइन करते जा रही है। बताइए जरा कौन कौन कहाँ कहाँ से।

हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल ऐसी हो ही जाती है कि कई मरतबा हम किसी की बात पर यकीन नहीं करते, और यकीन वैसे करना भी नहीं चाहिए, ना तो इंसान फरिश्ते हैं ना ही आजकल दौर ऐसा है कि भाई जान हर किसी पर यकीन किया जाए।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है जनाब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 और फेसबुक पर आपका हमारा साथ मौजूद रहेगा। और इसी के साथ साथ पूरे पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ हूँ जनाब। और यहाँ पर हजार खंड जतोई भाई कहते हैं आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अल्लाह जाहिदा हिदायत आपने गाने की फरमाइश कर दी, ॾिसूं था बाबा ॾिसूं था। और निदड़ी तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे, मां हलाइण जी कोशिश कयां थी। दर्दे दिल आ चुकी है, दर्दे दिल कहती है। अस्सलाम वालेकुम चंदा जानी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। चाचा कहते हैं आप हमसे बातें करें ना, बातें करें नहीं तो आई हूँ, मेरा जरा मूड नहीं था बस फिर सोचा चलें जी कर ही लेते हैं। अजय ने कहा हिदायतुल्लाह कहते हैं टॉपिक आंसर सिद्रा गाना सुना दें, ये लफ्ज कुछ ज्यादा बोलता हूँ मैं, नहीं प्रोग्राम में नहीं प्रोग्राम के अलावा भी लोगों के साथ बात करते हैं तो कौन सा लफ्ज जो कि आप ज्यादा बहुत ज्यादा

बात मुझे बेटे बेटे जरा याद आ गई। आजकल आप लोगों ने नोटिस करा है AI के गाने कितनी अच्छी अच्छी बनना स्टार्ट हो चुके यानी कि ये जो बात पहले की जाती थी ना कि AI इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि AI ने तो सिंगर्स की नौकरी बिल्कुल खा ली है। आजकल तो एड्स भी सारे AI से बन रहे हैं, तो देखें भाई वो इसीलिए कहते ना AI सीख ले, आगे बहुत आपको काम आएगा। तो AI के गानों से जरा बात याद आ गई कि AI के गाने जो आजकल इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, तो एक ऐसा AI का गाना आपने मुझे जरा बताना है जो कि आजकल आप सुन रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको यकीन नहीं आता कि ये AI का बना हुआ गाना है, क्योंकि बहुत गाने ऐसे आ चुके हैं मार्केट में जो मैं सुनकर भाई मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ये AI का गाना बना हुआ है, इतना अच्छा इतना सुरीला कि सुनकर बस मजा ही आ जाता है। तो जल्दी से मुझे बताएं कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि ये तो भाई AI का नहीं, लेकिन हाँ वो AI का होता है। तो भाई ये आजकल सिंगर्स की नौकरियां भी जरा खतरे में आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। इसीलिए भाई पढ़ी लिखी ISYS बने अपना फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर कर ले। और इनके अलावा अब्दुल्ला अली हमारे साथ कहते हैं अखरी चौधकी से अली गुलाब शर और अब्दुल्ला शर, बाजी आपका प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, आपको वेलकम कहते हैं। आपका ये जो सिटी है ना ये मुझे सही से नहीं इसका नाम आ रहा, मैंने सुना ही पहली मर्तबा, तो आपको वेलकम कहते हैं। उनका अलावा दर्दे दिल कहती हैं हाँ अमेजिंग सॉन्ग एंजॉय करें, और दर्दे दिल कहती हैं कि और अलीजा शो सुन रही है, टॉपिक अलीजा ज्यादा हाँ सही सही बोलती है, हाँ सही सही ओके हजार भाई कहते हैं जी हाँ जी टॉपिक में ज्यादा बोलता हूँ, और कभी कभी ओ माय गॉड भी बोलता हूँ, ओ माय गॉड ये जो भी लोग बोलते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है पता नहीं क्यों।

और हजार रुपए कहते रियली एआई मेरा काम भी खा जाएगा, लग तो ऐसा रहा है। आजकल देखें लोग ज्यादा कंटेंट जो है ना वो ऐसा बना रहे हैं कि मुझे ऐसा होता ना, पहले मैं सोचती थी कि लोग इतनी मेहनत करें वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनानी इतना मुश्किल काम होता था, लोग रिकॉर्डिंग करते थे, अपनी वीडियो बनाते थे, ऑडियो देते थे और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर एडिट करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि भाई एआई को दे दें वो सारा काम आपको करके दे देगा। और अब तो ऐसा है कि शॉर्ट्स भी आपने देखे होंगे बस सिर्फ एआई के ही चल रहे हैं, मैं बैगन उड़े, मैं गोभी उड़े, सारा बस यही चल रहा है, वीड मेरा पूरा भरा हुआ होता है। तो ये सुन सुन कर देख देख कर ऐसा लग रहा है कि भाई एआई ने इतना जो है ना वो हमारे लोगों के जहनों पर सवार हो चुका है कि बस उठते बैठते हमारे घर में तो यही चलता है, मैं एआई हूँ रे, मैं गोभी हूँ रे, मैं बैंगन हूँ रे, और ये पता नहीं कौन कौन सब्जियों के ये शॉर्ट्स बनाकर जो है ना ये बस चल रहे हैं आजकल। तो ये चीज देख कर अजीब ही लगता है और हम सोचते हैं भाई ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो अपना टाइम जो है ना वो ऐसी चीजों में जरा मत ही वेस्ट किया करें, बस आप ऐसी रील्स देखते हैं बैठकर। मैंने तो ऐसे सारे कंटेंट को जो है ना वो हाइड ही कर दिया है, मेरे पास इस तरह की कोई रील नहीं आती, लेकिन मेरे घर वाले जो है ना वो सारा दिन देखते रहते हैं। और ये वही बात आ जाती है, जो लोग जितना कंटेंट देखेंगे तो उनको वैसा ही जो है ना वो ज्यादा कंटेंट बनाएंगे लोग, यानी कि उनको व्यूज मिलते हैं तो वो ज्यादा बनाएंगे। अगर इस तरह का कंटेंट ज्यादा लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा बनेगा। तो ऐसा है कि आप देखना जरा बंद करें ताकि लोगों को ये चीज समझ आ जाए कि भाई कौन सा कंटेंट बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। भाई हाँ क्या पता एआई आरजेबी बन जाए अब तो कुछ भी हो सकता है, मैं कहती हूँ कुछ भी हो सकता है।

अब तो ये बात बिल्कुल मुझे लगती है कि सिंगर्स का तो भाई गयो, सिंगर्स तो गयो, क्योंकि इतने अच्छे से आए के गाने बन रहे ना, मैं सुनकर एक दो गाने में आपको सुनाऊंगी प्रोग्राम में, आप सुनिएगा आपको मजे आएंगे, आप बोलेंगे भाई ये AI जो गानो हुआ कहाँ लगे दो ही को ना, पर हाँ बिल्कुल AI जो गानो हो। अच्छा किशोर भाई कहती आओ मीम लवर आए हाँ जेको मीम पसंद अच्छे थो हु अप्लाई कर दो आया सेम सेम। अब्दुल्ला भाई कहते हैं बाजी मुझे एक अर्ज नहीं नहीं इंडियन गाने भाई अब नहीं लगाते हैं तो माजरत कर देते हैं। सादिया कहती है आप ही पांच उंगलियां बराबर नहीं है, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। भाई मैं किसी के ऊपर यकीन नहीं करती और मुझे पता है पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हाथ पूरा आप बंद कर देना तो पांच उंगलियां बराबर हो जाएंगी। तो मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करती हूँ, पांच उंगलियां जो है ना वो एक हो जाती है जब मुठ्ठी

भाई मैं होशियार हूँ, मैंने बंदोबस्त कर लिया हुआ है अपना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप अपना सोचिए जरा। वैसे वो वाली बात आ जाती है ना कि मैं लेडीज हूँ, मुझे फ्यूचर की ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए। समझ गए होंगे, तो लेडीज लोग को ज्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं। ओके, तो प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इसी हमारी बातें होंगी जी प्रोग्राम के अंदर, और आप लोगों के साथ बस बातें करेंगे, इधर उधर की बातें तो चलती रहेगी, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। यहाँ पर टाइम हो जाता है जी, हम जाएंगे न्यूज ब्रेक के जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे, आप बस यहीं बैठे रहिएगा, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, चलती का नाम मस्ती आपका हमारे साथ पूरे 3 बजे तक।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: एंड आफ्टर वी फिनिश डिफीटिंग इरान व्हिच इज बीइंग वेरी बैडली डिफीटेड Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
4: ट्रंप जो आपने हरमुज के जल्द अमेरिकी लायक करार देने जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कहते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान से मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करने मजबूर कंदासी जल्द आबना हरमुज के अमेरिकी लायक करार देने जो भी ऐलान कंदस व्हाइट हाउस आबना हरमुज बाबत सदर ट्रंप के बयान के मजाक करार दे छो अमेरिका सां गालियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि तेहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻोणे फ़ौजियुनि जे मान व्याजियाणो मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साहरा ISPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻोणे फ़ौजी सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई अॻोणनि फ़ौजियुनि पारां अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदार जारी रखण वारे अज़म जो वर्चाउ NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाकात NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾिनी वई वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत शहबाज शरीफ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि
0: आप सुन रहे थे GAFM
5: कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर।

0: जी ए मीरापुर FM 94 गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
2: 03013992836
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो, डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: Japan, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: ट्रंप जो अपना हरमुज के जल्द अमेरिकी इलाइको करार देने जो ऐलान न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं जल्द अपना हरमुज के अमेरिकी इलाइको करार ॾियण जो बि ऐलान कंदसि व्हाइट हाउस अपना हरमुज बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि थींदियूं ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त इस्लामाबाद मुफ़ाहमतनामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई आहे अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसर न रहिया आहिनि तहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻूणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साहरा एस पी आर मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणे फ़ौजी सरबराहन समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई अॻूणनि फ़ौजियुनि पारां बे अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार क़ौमी इतिहाद अमुन ऐं ख़ुशहालीअ लाइ किरदारु जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाओ NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मुलाक़ात NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे हवाले सां ब्रीफिंग वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत शहबाज शरीफ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि कराची जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी अदालत पारां जांच में सुस्तीअ ते ॻणती ज़ाहिर 24 अगस्त ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि हिकु माण्हू जो क़तलु थियो आहे जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाद करे छॾी पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत वकील जबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था गुड्स ट्रांसपोर्टर जी मुलगीर हड़ताल 8 ॾींहं बि जारी कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई मुल्क में सामान जी फराहमी मुतासिर थियण लॻी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिबि रोज़ानो लगभॻि 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकिरंदा आहिनि पर हड़ताल सबबि रुकिजी विया आहिनि हड़ताल सबबि मुल्की मैशियत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब इंडोनेशिया जी नारी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई मर्लिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारीअ खे बाज़ियाब करायो चक में कलोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फायरिंग वाटेड़ो क़तलु हिकु ज़ख़्मी बचल भयो थाणे जी हद ॻोठ ग़ुलाम नबी कलोड़ो में ॿिन्ही धुरियुनि विच में फायरिंग दौरान वाटेड़ो आसिम मारिजी वियो फायरिंग सबबि भरपासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुबतला इलाइक़े में छिकताण वधीक रतो छाण जो ख़दशो आहे सखर में जूनियर साइंस टीचर जे उमेदवारनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ एतिजाज जूनियर साइंस टीचर उमेदवारनि जो पासिंग मार्कूं 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उमेदवारनि खे बि भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रे पाणी जी खोट बिजलीअ जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ जे यू आई जो एहतजाज काटिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो अॻवाणनि चयो त ज़रे पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि शहरनि खां फुरू बिरोज़ जो मामूल बणियल आहिनि आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे

सिंधी मुख़्तलिफ़ शहरनि में औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ छाछरो वेझो घर जे कमरे मां औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लॻल लाश मिलियो आहे। सखर जे सिटी पॉइंट बाईपास वटां खेतर केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश हथायो आहे। सुञाणप न थी सघी आहे। सखर बैराज मां बि हिकु ॼणे जो लाश मिलियो आहे। सुञाणप न थी सघी आहे। ॾहिकीअ में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जे क़तल जो जरगे ज़रिए निबेरो ॾोहो साबित थियण ते इल्ज़ाम हेठि आयल धरती ॾोहो साबित 1,20,00,000 रुपया ॾंड लाॻू राउती में शहीद साफ़ी मोहम्मद बचल गुंजो जे क़तल जो निबेरो मियां रफ़ीक अहमद जे सरपंची हेठि थियो। मोहम्मद बचल गुंजो खे अगस्त 2024 में राउती थाणे जी हद में क़तल कयो वियो हो। दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाक़े जो ड्रॉप

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सीड़पकारी बाबति इजलास, केटी बंदर मनसूबे ते ग़ौर। केटी बंदर जी तरक़ीअ लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत जाम मॉडल तयार करण जी हिदायत। मुराद शाह चयो आहे त केटी बंदर मनसूबो रुगो सिंध न पर मुल्की तरक़ीअ लाइ अहम आहे। केटी बंदर खे तवानाई जे गेट वे तौर तरक़ी ॾिनी वेंदी। केटी बंदर मनसूबो तयारु थींदे ई मुल्की ऐं परदेही सीड़पकारनि जो वॾो अंग हिते सीड़पकारी लाइ रुख कंदो। केटी बंदर खे जदीद डीप सी पोर्ट ऐं मुआशी कॉरिडोर में तब्दील कयो वेंदो। केटी बंदर जी तरक़ीअ सां कराची पोर्ट ते दबाउ घटि थींदो, रोज़गार जा नवां मौक़ा पैदा थींदा ऐं सनअतूं तरक़ी कंदियूं। अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि पार्टी अॻवाननि जो मरीम अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि शरीक। आज़ाद कश्मीर में चूंडनि में कामयाबी बाद हुकूमत साज़ी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर। ज़रियनि जो चवणु आहे त इजलास दौरान मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरतहाल जो बि जाइज़ो वरितो वियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां अॻूणनि फ़ौजियुनि जे मान में आजियाणो। मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि जी साहरा। SPR मौजूदु फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पारां ॾिनल आजियाणे में अॻूणे फ़ौजी सरबराहनि समेत वॾे अंग में रिटायर्ड आफ़ीसर ऐं जवान शरीक थिया। फील्ड मार्शल मुल्की दिफ़ा लाइ कयल ख़िदमतनि ते संदन वाखाण कई। अॻूणनि फ़ौजियुनि पारां बे अस्करी क़यादत ते एतमाद जो इज़हार। क़ौमी इतिहाद, अमुन ऐं खु़शहालीअ लाइ किरदारु जारी रखण वारे आज़म जो वर्जाउ। NDMA चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। NDMA चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पारां NDMA खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। कराची जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी। अदालत पारां जांच में सुस्तीअ ते ॻणिती ज़ाहिर। 24 अगस्त ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि। हिकु माण्हू जो क़तल थियो आहे, जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो। अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाद करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत। वकील जबरान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था। गुड्स ट्रांसपोर्टर जी मुलगीर हड़ताल 8 ॾींहं बि जारी। कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई। मुल्क में सामान जी फरहमी मुतासिर थियण लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिबि रोज़ानो लॻभॻ 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबबि रुकजी विया आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्की मैशियत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सान थियो आहे। शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब। इंडोनेशिया जी नारी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई। मर्लिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो। कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारीअ खे बाज़ियाब करायो। चक में कलोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में फायरिंग। वाटेड़ो क़तल, हिकु ज़ख़्मी बचल। भयो थाणे जी हद ॻोठ गुलाम नबी कलोड़ो में ॿिनि धुरियुनि विच में फायरिंग दौरान वाटेड़ो आसिफ मारिजी वियो। फायरिंग सबबि भर पासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुबतला। इलाइक़े में छिकताण, वधीक रतो छाण जो ख़दशो आहे। सखर में जूनियर साइंस टीचर जे उमेदवारनि जो मुतालबनि जी मंटल आहे। जा जूनियर साइंस टीचर उमेदवारनि जो पासिंग मार्कूं 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो। 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उमेदवारनि खे बि भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट, बिजली जी लोड शेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ JUI जो एहतजाज। काटिया मोहला खां रैली कढी अर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाणनि चयो त ज़रई पाणीअ जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि। शहरनि खां फुरू बिरोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में औरत समेत टिन जन लाश हथ छाछरो वेझो घर के कमरे में औरत कविता मेघवाड़ जो फाहो लगल लाश मिलो है। सखर के सिटी पॉइंट बायपास वटा खीरधर केनाल में नामालूम शख्स जो लाश हथाय है। सुणप नी सी है। सखर बैराज में भी एक जने जो लाश मिलो है। सुणप नी सी है। डहरकी में शहीद साफी मोहम्मद बचल गुंजो के कतल जो जरगे जरिए निबेरो डोह साबित थियण ते इल्ज़ाम हेठ आयल धरती डोह साबित 1,20,00,000 रुपया डट लागू। राउंती में शहीद साफी मोहम्मद बचल गुंजो के कतल जो निबेरो मियाँ रफीक अहमद के सरपंची हेठ थियो। मोहम्मद बचल गुंजो के 2024 में राउंती थाने की हद में कतल कयो वियो हो। दादू में 1.5 करोड़ रुपये के सोन चोरी थियण वाले वाक़े जो ड्रॉप सीन चोर फरियादी ए संदस सालो निकतो फरियादी दुकानदार गिरफ्तार। SSP दादू चया है CCTV जियोफेंसिंग जरिए जांच दौरान सोन चोरी जो ड्रामो पधरो थो। सोन चोरी करे खणी वेल दुकानदार जो सालो अर्शद जोयो फरार थी वयो। वधीक जांच जारी है। इंडोनेशिया के साहिली इलाके में जिलजिलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। जिलजिले सबब केतरी ही इमारतू पट 20 जणा फोत केतरा ही जख्मी। इंडोनेशियाई साहिल वेझो आयल जिलजिले सबब रहवासी घर का बाहर निकरी आया। किरियल इमारतन के मलबे में दबियल मानून के बाहर कटण ला रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है।

0: साल ग्रह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
0: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
3: 03013992836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाइ 0301 91 896।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: प्रीटी सून आई विल बी डिक्लेयरिंग द होर्मुज स्ट्रेट ए टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
2: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आबन हुरमस के जल्द अमेरिकी इलाइको करार देने जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब के खिताब कदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो तो ईरान ते मौशी दबाव विझी जंग खत्म करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबन हुरमस के अमेरिकी इलाइको करार देने जो भी ऐलान कंदुस। व्हाइट हाउस आबन हुरमस बाबत सदर ट्रंप के बयान के मजाक करार ॾेई छॾियो। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वठि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राखची जो चवणु हो त इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में जंग बंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमेरिका भञकड़ी कई। अमेरिका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मौसर न रहिया आहिनि। तहरान अमेरिका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सीड़पकारी बाबति इजलास। के टी बंदर मनसूबे ते ग़ौर वीचार। के टी बंदर जी तरक़ीअ लाइ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत जामे मॉडल तयारु करण जी बि हिदायत। मुराद अली शाह चयो त के टी बंदर मनसूबो रुगो सिंध न पर मुल्की तरक़ीअ लाइ अहम आहे। के टी बंदर खे तवानाई जी गेट वे तौरु तरक़ी ॾिनी वेंदी। के टी बंदर मनसूबो तयारु थींदे ई मुल्की ऐं परॾेही सीड़पकारनि जो वॾो अंगु हिते सीड़पकारी लाइ रुख कंदो। के टी बंदर खे जदीद डेप सी पोर्ट ऐं मुआशी कॉरिडोर में तब्दील कयो वेंदो। केटी बंदर जी तरक़ीअ सां कराची पोर्ट ते दबाव घटि थींदो, रोज़गार जा नवां मौक़ा पैदा थींदा ऐं सनअतूं तरक़ी कंदियूं। अॻूणे वज़ीर आज़म नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि पार्टी अॻवाननि जो मरियम अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं वज़ीर आला मरियम नवाज़ बि शरीक। आज़ाद कश्मीर में चूंडनि में कामयाबी बाद हुकूमत साज़ी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ग़ौर वीचार। ज़रियनि जो चवणु आहे त इजलास दौरान मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरतहाल जो बि जाइज़ो वरितो वियो। आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी ऐं भारतीय फ़ौज जो गठजोड़ बेनकाब। कश्मीरनि पारां इंतशारी कमेटीअ जो बयानो रद्द करण बाद सहूलतकार भारतीय फ़ौज खुलियल तौर साम्हूं अची वई। भारतीय फ़ौज पाकिस्तान मुख़ालिफ़ जज़्बा भड़काइण लाइ पर केरन सेक्टर में वॾनि स्क्रीन ते वीडियोज़ हलाए छॾियूं। माहिरनि मूजिबि भारतीय फ़ौज बालाल कश्मीर में थींदड़ ज़ुल्म लिकाइण लाइ वीडियोज़ ज़रिए कूड़ी प्रोपेगेंडा करे रही आहे। आज़ाद कश्मीर वासियुनि भारतीय प्रोपेगेंडा खे रद्द करे छॾियो आहे। एनडीएमए चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। एनडीएमए चेयरमैन पारां वज़ीर आज़म खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म पारां एनडीएमए खे सूबनि सां सहकार करण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त मुतासिरनि खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि। कराचीअ जी अदालत में नौजवान वापारी मीर रज़ा केस जी ॿुधणी। अदालत पारां जांच में सुस्ती ते गणती ज़ाहिर। 24 अगस्त ताईं जांच मुकमल करे रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। अदालत रिमार्क्स ॾींदे चयो त वालिद ख़ानदान ऐं शहरी परेशान आहिनि। हिकु माण्हूअ जो क़तलु थियो आहे, जांच करे हक़ीक़तूं साम्हूं आणियो। अदालत मीर रज़ा जे भाईवार मोहम्मद अहमद जी अबूरी ज़मानत में 10 ॾींहनि जी वाधि करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी बि हिदायत। वकील जिब्रान नासिर चयो त मीर रज़ा जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था।

गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी मुल्कगीर हड़ताल 8 ॾींहं बिचारी कराची पोर्ट कंटेनर सां भरिजी वई। मुल्क में सामान जी फरहमी बि मुतासिर थियणु लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिबि रोज़ानो लॻभॻि 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकिरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबबि रुकिजी विया आहिनि। हड़ताल सबबि मुल्की मैशत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सानु थियो आहे। शादी जे बहाने पाकिस्तान घुराए क़ैद करण जी शिकायत ते इंडोनेशियन नारी हैदराबाद मां बाज़ियाब। इंडोनेशिया जी नारी जी शिकायत ते वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जी कार्रवाई मर्लिन मैसेज खे बाज़ियाब करायो। कोर्ट जे हुकुम ते पुलिस कार्रवाई करे नारी खे बाज़ियाब करायो। चक में कलोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में फायरिंग वाटहड़ू क़तल हिकु ज़ख़्मी। बचल भयो थाणे जी हद ॻोठ ग़ुलाम नबी कलोड़ो में ॿिन्ही धुरनि विच में फायरिंग दौरान वाटहड़ू आसिफ महर मारिजी वियो। फायरिंग सबबि भरपासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुब्तला। इलाइक़े में छिकताण वधीक रतो छण जो ख़दशो। सखर में जूनियर साइंस टीचर्स जे उमेदवारनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज। जूनियर साइंस टीचर उमेदवारनि जो पासिंग मार्क्स 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो। 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उमेदवारनि खे बि भर्ती वारे अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट, बिजलीअ जी लोडशेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ JUI जो एहतजाज। काठिया पाड़े खां रैली कढी आर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवान जो चवणु हो त ज़रई पाणी जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि। शहरनि खां फुरूं बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमुन बहाल करायो वञे।

0: दादू में 1.5 करोड़ रुपयनि जे सोन चोरी थियण वारे वाके जो ड्रॉप सीन चोर फरियादी ऐं संदसि सालो निकितो। फरियादी दुकानदार गिरफ़्तार। SSP दादू चयो आहे त CCTV ऐं जियो फेंसिंग ज़रिए जांच दौरान सोन चोरीअ जो ड्रामो पधरो थियो। सोन चोरी करे खणी वियल दुकानदार जो सालो अरशद जोयो फरार थी वियो आहे। वधीक जांच जारी आहे। ऐं इंडोनेशिया जे साहिली इलाइक़े में ज़िलज़िलो शिदत 7.7 रिकॉर्ड। ज़िलज़िले सबब केतिरियूं ई इमारतूं पट 20 ॼणा फ़ौत थी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। इंडोनेशियाई साहिल भरिसां आयल ज़िलज़िले सबब रहवासी घरनि खां ॿाहिरि निकिरी आया। किरियल इमारतुनि जे मलबे में दॿियल माण्हुनि खे बि ॿाहिरि कढण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और ज़हनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मज़ीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो जारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03514456
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803847।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94। अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।
8: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीय जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीय जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई
3: 0301-380-4743

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जे, कुछ शिकायतूं असां ताईं पहुतियूं जंहिंते अफ़सोस आहे। उमेद न हुई त पीपल्स पार्टी तरफ़ां को शिकायत जो मौक़ो मिलंदो। शहबाज शरीफ जी महिनत रंग ॾेखारे रही आहे, मुल्क तरक़ी करे रहियो आहे। मरियम में पार्टी इजलास खे ख़िताब कंदे नवाज़ शरीफ चयो त आज़ाद कश्मीर चूंडुनि जे ॿिनि मरहलनि में ई नून लीग कामयाबी माणी आहे। जहिड़ीअ तरह पंजाब तब्दील थी रहियो आहे, अहिड़ीअ तरह आज़ाद कश्मीर खे बि तब्दील थियणु घुर्जे। नून लीग डिलीवर न कयो त हुतां जो अवाम नाराज़ थींदो।

0: गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जी मुल्कगीर हड़ताल 8 ॾींहं विचारी कराची पोर्ट कंटेनर्स सां भरिजी वई। मुल्क में सामान जी फरामी बि मुतासिर थियणु लॻी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मूजिब रोज़ानो लॻभॻि 10,000 कंटेनर बंदरगाहनि मां निकिरंदा आहिनि, पर हड़ताल सबबि रुकिजी वञनि था। हड़ताल सबबि मुल्की मैशत खे 50 अरब खां वधीक जो नुक़सानु थियो आहे। चक में कलोड़ा ऐं जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में फायरिंग वाटड़ू कतल समेत ॿ ॼणा क़तल थी विया। कोट गुलाम नबी कलोड़ो में धुरनि विच में झेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में वाटड़ू आसिफ़ मार ऐं बशीर जतोई क़तल थी विया। फायरिंग सबबि भरपासे जा रहवासी ख़ौफ़ में मुब्तला। सखर में जूनियर साइंस टीचर्स जी उमेदवारनि जो मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज। जूनियर साइंस टीचर्स उमेदवारनि जो पासिंग मार्क्स 55 मां घटाए 50 करण जो मुतालबो। 50 खां 54 नंबर हासिल कंदड़ उमेदवारनि खे बि भर्ती वरी अमल में शामिल करण जी अपील। नसीराबाद जे मुख़्तलिफ़ शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट, बिजली जी लोडशेडिंग ऐं बदमनी ख़िलाफ़ JUA जो एहतजाज। काठिया पाड़े खां रैली कढी आर्थर शाख जे पुल वटि धरणो हयो वियो। अॻवाननि चयो त ज़रई पाणी जी खोट सबबि आबादगार परेशान आहिनि, शहरनि खां फुरूं बि रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। आबादगारनि खे पाणी ॾेई अमन अमान बहाल करायो वञे। हैदराबाद मां 4 वरनि जो मासूम ॿारड़ो पुरसरार नमूने गुम, वारिस सख़्त परेशान। पुराणी वहदत कॉलोनी वारे इलाइक़े मां 4 वरनि जो अहमद सोलंकी पुरसरार तौरु गुम थी वियो। NC दाख़िल। वारसनि चयो त ॿार जे गुम थियण खां पोइ इलाइक़े वासियुनि ऐं शहरनि तरफ़ां बि संदसि ॻोल्हा जारी आहे। डहरकी में शहीद सहाफ़ी मोहम्मद बचल घुञो जे क़तल जो जर्गे ज़रिए निबेरो ॾोह साबित थियण ते इल्ज़ाम हेठि आयल धुर ते ॾंड। मजमूई तौरु 1,20,00,000 रुपया ॾंड रखियो वियो। रावतीअ में शहीद सहाफ़ी मोहम्मद बचल घुञो जे क़तल जो निबेरो मियां रफ़ीक़ अहमद जी सरपंची हेठि थियो। मोहम्मद बचल घुञो खे आगस्ट 2024 में रावती थाणे जे हद में क़तल कयो वियो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।

0: मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, MADS, MS सिंध, RHMP इस्लामाबाद पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन, माहिर अमराज गुर्दे पत्ते ए मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो। संदन जोड़न गोडन जो सूर, नक कन गलो पुराणो नज़लो, निछू मथे जो सूर, अध मथे जो सूर, नज़र जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर घट बुधण में अचण, शुगर ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फॉलिज, खंग, टीबी, मादे जो सूर, मादे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपाटाइटिस BC, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, औरतन में कद जो न वधण, औरतन मदन जे मर्दन जे पोशीदा बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने थो। टाइम हर अरबा ऐं खमीस ते सुबुह 10 खां 4 वॻे खां ताईं, जर्मन हर खमीस खां सुबुह 10 खां वठी शाम 5 वॻे ताईं।
1: दोस्तों के टाइम टेबल बुधाईंदा हलूँ तो डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ए सूमर ते सुबह जो 10 खां शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपुरा पेट्रोल पंप कोतरी कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। फ्रॉम आई सेहत जी गाल जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ सवान जे समातुन ते पहुंचे पियो। असन जे स्टूडियो में मौजूद सिंध जा मशहूर मारूफ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब, जैसा असा गाल बोल करियूं था। सब खां पहिरियां त असां डॉक्टर साहब के खुश आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब जो खास महिरबानियूं आहिनि, मोहब्बतूं आहिनि, जो पंहिंजो कीमती वक्त कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम साईं।
1: डॉक्टर साहब ठीकु आहियो?
2: जैसे अल्लाह ताला जा एहसान।
1: अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ू ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा, पर इन खां पहिरियां आऊं दोस्तनि खे नंबर ॿुधाईंदो हलां लाइव कॉल जो, 0301-2196-8051 ते तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल बि करे सघो था, कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहब खां मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था। त पहिरियां डॉक्टर साहब सां मुखातिबु थींदा। जी डॉक्टर साहब।
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہریاں تو تعریفوں ان رب پاک جو جو اساں کے جارے تو خارائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمینی آسمانی آفتن کا محفوظ رکھے تو۔ اساں جو پروگرام صحت جی گال اور خبر ہے تو ہر روز ان ٹائم تے نشر تھیندو ہے۔ اڑے طریقے سے اساں جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک جے کہ مہراپور شہر میں موجود ہے، ایڈریس اواں کے نوٹ کرے نالو जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड। टाइमिंग असांजी सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। डेज़ असांजा जेके ॾींहं आहिनि विहण जा, उहे आहिनि हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जंहिंमें 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं। उनखां अलावा अंगारे जो ॾींहुं असांजी मोकल हूंदी आहे। बक़ाया ॿिया ॾींहं असां क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहियूं। सूमर अरबा खमीस बि क्लिनिक जा डेज़ आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि हुन में कोशिशि कंदा आहियूं त जेके बि असांजी जे तव्हां शुरू में असांजो प्रोमो ॿुधंदा आहियो त हुन में जेके बि बीमारियूं आहिनि उन जे मुतालिक़ तव्हांखे आगाही ॾिनी हूंदी आहे। जंहिंमें बीमारियुनि में असां मादे जी बीमारी बि अव्हां ताईं डिस्कस कंदा आहियूं। न सिर्फ़ु डिस्कस कंदा आहियूं, जॾहिं उनजा पेशंट असां वटि क्लिनिक ते ईंदा आहिनि त पोइ उन्हनि जी ट्रीटमेंट बि कई वेंदी आहे। अलहमदिल्ला हू काफ़ी सारो हुन में फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं असां वटि के अहिड़ा केसिस वधी वेंदा आहिनि, हर असां वटि तव्हां ॾिसंदो त ॿिए मां टियों शख़्स मादे जी बीमारियुनि में ई मुंतकिल हूंदो आहे ऐं असां वटि ईंदो आहे। ऐं जेको आहे सो उनजी जेकॾहिं असां वटि डाइग्नोस करे ईंदो आहे त असां हुनखे मुख़्तलिफ़ टेस्टूं करे ईंदा आहियूं। जंहिंमें हिकु टेस्ट जॾहिं पेशंट असांखे कुझु निशानियूं ॿुधाईंदो आहे त

0: तकलीफ़ जे हिसाब सां त हिकु टेस्ट एच पैलोरी ज़रूरु कराईंदा आहियूं। एच पैलोरी इन जे करे कराईंदा आहियूं जॾहिं उहो पेशेंट ईंदो आहे मादे जी त हर को दाह कंदो आहे, कंहिंखे जलन रहंदी आहे, कंहिंखे यानी एसिडिटी थींदी आहे, कंहिंखे छाछार वग़ैरह ईंदी आहे, पर कंहिं कंहिं पेशेंट अहिड़ा हूंदा आहिनि त चवंदा आहिनि असांखे मानी खाइण सां ई जेको असां पेट में सूरु पइजो पियो वञे या जलन बि थिए थी, गॾो गॾु उल्टी बि अचे थी, कड़वाहट बि थिए थी, ऐं उन खां गॾो गॾु उहो अॻिते हली जेको
1: पंहिंजे मौज़ू खे जारी रखंदासीं। मुंहिंजो ख़्यालु आहे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, पहिरियों उन दोस्त खे शामिल कंदा हलूं, इन खां बाद में वरी कॉलनि जो सिलसिलो बि जारी रहंदो, पंहिंजो मौज़ू बि कॉलनि सां गॾु जारी रखंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: साईं, मुंहिंजा केरु साहिब पियो ॻाल्हाए? भली कार चऊं था, ज़हीर साहिबु ठीकु आहियो? छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां मुंहिंजा साईं?
2: मोके जी बीमारी आहे, मोको आहे।
1: अच्छा, पायल साईं,
2: इन जो को इलाज?
1: बिल्कुलु इलाज मौजूदु आहे डॉक्टर साहिबु वटि, भली हलिया अचो। इहो इलाज मुकमिल मौजूदु आहे, तव्हांखे ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत न आहे, छो जो जेके माण्हू ऑपरेशन कराइनि था उन्हनि खे वरी थी वञनि था। अलहमदिल्ला मशहूरु डॉक्टर, हिकु वॾो डॉक्टर तव्हां वटि मौजूदु आहे मेहरापुर शहर में, तव्हां भली सुभाणे ई हलिया अचो, रूबरू ॾेखारियोसि, इलाज मौजूदु आहे, इनशाला तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो। वधीक एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। ऑपरेशन कराइण सां वरी थी था वञनि पिया, तंहिंजे करे तव्हां दवा डॉक्टर साहिब वटि त कोन आया हूंदा, डॉक्टर साहिब वटि कोन आया हूंदा, ॿी जॻह ते विया हूंदा, हुते हुते या कीअं, तंहिंजे करे तव्हां लाॻीतो इलाज करायो डॉक्टर मंज़ूर साहिब खां। माशाल्लाह मशहूरु डॉक्टर अथव पूरी सिंध में, परे परे जा ॾिसो था, पंजाब खां बलोचिस्तान खां माण्हू डॉक्टर साहिबु वटि ईंदा आहिनि, पाण प्रोग्राम में ॿुधंदा हूंदो त माण्हू पाण मैसेज ॾेई वेंदा आहिनि त साईं असांखे एतिरो माना रिज़ल्ट मिलियो। अलाह बहितर, अलाह साईं जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। तव्हां एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो, मज़ीद ऐं तव्हांखे इहो मशवरो ॾींदो, तव्हां डॉक्टर साहिबु खे रूबरू ॾेखारियो, ठीकु आहे भाउ? थैंक यू जी डॉक्टर साहिबु।
0: जी साईं, माशाल्लाह अॼु हिकु ॻाल्हि सां ख़ुशी बि इहा थी त असांजे अवाम में माशाल्लाह तमामु सुठो हिकिड़ो शऊरु अची वियो आहे। यानी ॾिसो, हिकिड़ो असां हर प्रोग्राम में असां ख़ुदि जॾहिं पेशंट्स खे या पंहिंजे अवाम खे ॿुधाईंदा आहियूं त जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जा केसिस थींदा आहिनि, मिसलनि पाइल्स आहे या मौक़ा आहिनि, मिसल बवासीर आहे, त जॾहिं को बि ऑपरेशन डॉक्टर ॿुधाए थो भई माण्हू कराए था अचनि त वरी दुबारा थी वेंदा आहिनि, लेकिन पोइ शायदि असांजी इन ॻाल्हि खे केरु सीरियस न वठंदो आहे या एतमाद न कंदो आहे। पर इहा हक़ीक़त आहे जेकी अॼु ख़ुदा ते तव्हांखे जेको आहे सो पाण ॿुधाई, ज़ाहिर आहे उन जे तजुर्बे जे ॾाढो को अज़ीज़ हुनजो को मिट माइट को अहिड़ो ऑपरेशन करायो हूंदो जंहिंखे वरी दुबारा थियो हूंदो, तॾहिं हो छो जो हर ॻाल्हि केरु पंहिंजे तजुर्बे सां ई कंदो आहे। असांजा बि जेके इहे दावा हूंदा आहिनि, ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि या इलाज जेको कंदा आहियूं त पंहिंजे तजुर्बे सां ई ऐं पंहिंजी स्टडी सां ई कंदा आहियूं, त इन जे करे अव्हांखे इहा ॻाल्हि वाक़ई जेको आहे सो हक़ीक़त आहे त जेको बि जेको आहे सो जेकॾहिं बवासीर जो ऑपरेशन कराए थो त हुनखे दुबारा थी वञनि था, छो जो इहो जड़ हुनजी ख़तमु नथी थिए। ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधाईंदा आहियूं त होम्योपैथिक उहा दवा आहे जेकी मर्ज़ खे जड़ खां वठी ख़ात्मो आणींदी आहे, चाहे पोइ उहो बवासीर छो न हुजे, चाहे स्टोन्स पथरियूं छो न हुजनि, चाहे जेको आहे सो नक जी हॾी वधियलु हुजे उनजो ऑपरेशन छो न हुजे, चाहे कहिड़ो बि मर्ज़ु हुजे, जॾहिं असां उनजो इलाजु कंदा आहियूं त उहो मर्ज़ु, हा कुझु टाइम ज़ाहिर आहे त उनखे दवा इस्तेमालु करणी पवंदी आहे, 4 महीना 5 महीना 6 महीना कंहिंजो जेको आहे सो मिसाल को ॾिसो, कंहिंखे पुराणो दमो आहे, पुराणी जोड़नि जी तकलीफ़ आहे, पुराणी अहिड़ा अमराज़ आहिनि, हूअं जो मेडिकल जी दवा सारी ज़िंदगी खाए, पर जेकॾहिं कुझु अरसो होम्योपैथिक दवा खाइबी त उन ऐं बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे, हुनजा साइड इफ़ेक्ट आहिनि, हिन जो को साइड इफ़ेक्ट कोन्हे, त उन सां पेशंट रिकवर न सिर्फ़ु रिकवर थींदो वेंदो आहे बल्कि गॾो गॾु तंदुरुस्त बि थींदो वेंदो आहे। जी हा, सो असां अचूं था पंहिंजे मौज़ू जे तरफ़, त मां ॻाल्हि पई कई त एच पैलोरी हिकिड़ो बैक्टीरिया, हिकिड़ो जरासीम आहे जेको असांजे मादे में नंढे आंड्रे जे हिसे, पहिरें हिसे में वञी वेही रहंदो आहे, ऐं पोइ जेको आहे सो उन जे हुजण सां, यानी उन उहो हिकिड़े क़िस्म जो दुश्मन हिकिड़ो जरासीम आहे जेको असांजे मादे में वेंदो आहे, असांजे मादे खे डिस्टर्ब कंदो आहे, ऐं पोइ जेको आहे सो उन जे करे जेकी मां तव्हांखे तकलीफ़ ॿुधाई त पेट मानी खाइण सां जेको पेट में सूरु पइजी ईंदो आहे, कंहिंखे उल्टी थी वेंदी आहे, कड़वाहट थी वेंदी आहे, एसिडिटी थी वेंदी आहे, जलन थी वेंदी आहे, पोइ गॾो गॾु इहा जॾहिं तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे त वरी जेको आहे सो वॾे आंड्रे में बि जेको आहे सो इहा जेको सो जरासीम अची वेंदो आहे, जंहिंजे करे पोइ यानी हिकिड़े ॿ टिनि क़िस्मनि जूं शिकायतूं थींदियूं आहिनि। फिर मां पहिरीं ॻाल्हि ॿुधाई कंहिंखे मानी खाइण सां जल्दी सूर पइजे, कंहिंखे वरी ईअं थींदो आहे जो केरु मानी खाईंदो आहे कुझु टाइम खां ॿिनि टिनि कलाकनि खां पोइ हुनखे शदीद सूर पवंदो आहे। इहा बि जेको आहे सो हिकिड़ी ख़ासि अलामतूं आहिनि, ऐं इहे जेको आहे सो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त एच पायलोरी यानी हेलिकोबैक्टेरिया वायरस आहे, जंहिंखे घणा मज़ाक कंदा आहिनि हेलीकॉप्टर वारी बीमारी बि चवंदा आहिनि, लेकिन इहो हिकिड़ो जरासीम आहे हेलिकोबैक्टेरिया, जेको कंहिंखे बि थी सघे थो। ऐं इन जे थियण सां जेको आहे सो पेशंट यानी सवली सिंधी में चऊं त माइदे जी अल्सर थी वेंदी आहे, जंहिंजे करे पेशंट तकलीफ़ में अची वेंदा आहे। अॻिते हली जॾहिं इहा तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे त पोइ इन मां मैदे जो यानी अल्सर मां कैंसर बि थी सघे थी। इन जे करे घणा इनखे सीरियस न वठंदा आहिनि। ऐं असां वटि मशहूरु बसि हिकिड़ो कैप्सूल आहे जेको रोज़ु माण्हू राति जो खाईंदो, अवा असां उहो कैप्सूल खाईंदासीं। अव्हांखे ख़बर आहे त इन अहिड़े क़िस्म जी दवाउनि जा साइड इफ़ेक्ट्स केॾा ख़राब आहिनि। उहे कैप्सूल अॻिते हली पंहिंजी तव्हांजे जिस्म जूं जेकी हॾियूं हूंदियूं आहिनि उहे कमज़ोर करे छॾींदो आहे, ऐं उहे भुरभुरियूं थी वेंदियूं आहिनि, ऐं उन खां पोइ दुनिया जी का बि पेन किलर उनखे यानी फ़र्क़ु न ॾींदी आहे। उन सां अॻिते हली हुन जे अव्हांजी मर्दानगी ते असरु पइजी वेंदो आहे, तव्हांजी जेको आहे सो ताक़त ख़तमु थी वेंदी आहे। लेकिन इहे साइड इफ़ेक्ट्स आहिनि, कंहिंजी नज़र घटिजी वेंदी आहे, कंहिंजो को मसइलो थी वेंदो आहे, लेकिन हिते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां वटि इहो आहे त जल्दी असांखे फ़ाइदो पए, पोइ चाहे इंजेक्शन मां पए, चाहे ड्रिप मां पए, चाहे हज़ारे रुपया ख़र्च करण सां पए, पर जल्दी पए ऐं आरज़ी छो न उहो आरज़ी फ़ाइदो हुजे। पर हिते जेकॾहिं असां मुकमल कंहिंखे कुझु टाइम ॾींदा आहियूं त हिते कुझु टाइम दवा माण्हू खाइण जे लाइ तयारु न हूंदा आहिनि, पर जेके पेशंट्स असां वटि अची चुका आहिनि ऐं कुझु टाइम जेको हुननि असांजे चवण ते दवाऊं खाधियूं आहिनि त उहे अहिड़े जेके मूज़ी अमराज़ आहिनि उन्हनि मां अलहमदिल्ला उन्हनि खे छुटकारो मिली चुको आहे। जंहिंजा व्यूज़ उहे ख़ुदि FM रेडियो ते लाइव बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं असां वटि क्लिनिक ते अची बि जेको आहे सो लाइव रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि, जंहिंमां कुझु व्यूज़ आहिनि जेके अॼु बि अवां ताईं ॿुधाईंदासीं। लेकिन पहिरियां हिन बीमारी जे बारे में अवां ताईं इहा आगाही पहुतासीं त अहिड़े क़िस्म जी ख़तरनाक बीमारी आहे, उन जे करे जेको आहे सो तव्हांखे निंड बि न अची सघे थी, तव्हांजी जेको आहे सो बेचैनी थी सघे थी, तव्हां डिप्रेशन जा पेशंट थी सघो था, तव्हां रत जी कमी में अची सघो था, तव्हां कमज़ोरी में अची सघो था, तव्हां खोड़ सारी बीमारियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। इन जे करे इन जो होम्योपैथिक में तमामु कामयाबु इलाजु आहे। इन खां रोकथाम जे लाइ अव्हांखे जल्द अज़ जल्द जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी अव्हांखे शिकायत थिए थी जेके तव्हांखे ॿुधाई आहे त तमामु क़रीबी कंहिं सुठे गिस्ट्रोलॉजिस्ट वटि या होम्योपैथिक कंहिं सुठे फिज़िशियन खे ज़रूरु ॾेखारियो। इन जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं थींदियूं आहिनि, एच पैलोरी हिकिड़ी ब्लड टेस्ट थींदी आहे, लेकिन आउं सजेस्ट कंदो आहियां एच पैलोरी स्टूल जी टेस्ट जेकी हूंदी आहे, पाखाने जी जेकी टेस्ट हूंदी आहे, उनमें एंटीजन मौजूदु हूंदो आहे ऐं उहो जरासीम नज़र अची वेंदो आहे। ऐं उनखां पोइ खोड़ सारियूं ॿियूं बि टेस्टूं आहिनि उन्हनि जी जेको आहे सो यानी जीअं हिकिड़े क़िस्म जी अव्हांखे सवली सिंधी में ॿुधायूं त कैमीरा यानी उनजी टेस्ट जहिड़ी थींदी आहे त कैमीरा आंडर में वेंदी आहे ऐं उनजी पोइ मुकमल उनमें ख़बर पवंदी आहे त उनमें बि जेको आहे सो इहो जरासीम मौजूदु आहे या नाहे, अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो इन जे करे। लेकिन एतिरनि वॾनि टेस्टनि खां बचण जे लाइ बहितर इहो आहे त की तव्हां सुठे डॉक्टर खे ॾेखारींदव त उनमें अव्हांजो वक़्तु बि बचंदो, अव्हांजो पैसो बि बचंदो ऐं अव्हांखे जेको आहे सो जल्दी शिफ़ा बि थी वेंदी। अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे यानी मां जेकी बीमार टेस्ट जी ॻाल्हि बि कई त यानी घणा तव्हां एंडोस्कोपी ज़रूरु ॿुधो हूंदो, हिनखे एंडोस्कोपी चइबो आहे जेको जेको आहे सो टेस्ट कई वेंदी आहे। लेकिन इन्हनि टेस्टुनि खां इन टाइमिंग ख़राबु थियण खां बचण जे लाइ बहितर इहो आहे तव्हां असां वटि जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते कॾहिं बि अचो, अहिड़े क़िस्म जी का बि तकलीफ़ आहे त अलहमदिल्ला हुन में बिल्कुलु शिफ़ायाबी थींदी। इन में पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखंदा कयो, कोशिशि कंदा कयो त छो जो बीमारी किथां ॿाहिरां कोन ईंदी आहे, पंहिंजे पेट जे रस्ते वात जे रस्ते वेंदी आहे। जॾहिं तव्हां अहिड़ी का शयूं इस्तेमालु कंदो त तव्हांखे इहा तकलीफ़ वधी सघे थी। इन जे करे ॻाढ़ो मिर्च असांजो दुश्मन आहे, ॻाढ़ो मिर्च तमामु घटि में घटि इस्तेमालु कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां मानी तव्हां पंहिंजे टाइम ते ज़रूरु खाईंदा कयो, यानी जेको टाइम आहे राति जो तक़रीबन मां इहो ई सजेस्ट कंदुसि त 8 बजे अव्हांखे 7 बजे 8 बजे तव्हांजे राति जी मानी खाइणु खपे त जीअं सुम्हण जे टाइम खे थोरो वक़फ़ो मिली सघे ऐं तव्हां थोरो मानी हज़म थी सघे। अहिड़े तरीक़े सां खाधे पीते खां पाणी जेको आहे सो ज़रूरु अॻे थोरो पियो कयो, खाई पी मानी ऐं जल्दी पाणी पीअण बि जेको आहे सो मादे खे नुक़सानु पहुचाईंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो तरियल शइ नुक़सानदेह आहे, खटी शइ नुक़सानदेह आहे, सुठो फ्रूट जेको आहे इस्तेमालु कयो, अव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो। हर खाधे खां पोइ सौंफ चूसण जी आदत विझो। सौंफ तमामु हिकिड़ो मादे खे ऐं जेको आहे सो साफ़ु रखे थो, ख़ुशबूदार रखे थो ऐं तकलीफ़ुनि खां जेको आहे सो बचाए थो। पाणी जो इस्तेमालु तमामु ज़्यादा कयो, चांहि जो इस्तेमालु बंदि कयो, खीर जो इस्तेमालु अव्हां पंहिंजे मामूल में आणियो। इनशाला तव्हां अव्हां बिल्कुलु जेको आहे सो ठीकु थी वेंदो ऐं सिहतयाब थी वेंदो। ऐं अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे सो जेके बि इहे असां वटि जेके ॿाहिरियूं शयूं जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो, बर्गर वग़ैरह या मुर्गन ग़िज़ाऊं, इहे तमामु हानिकार आहिनि ऐं नुक़सानकार आहिनि। इन्हनि खां तव्हां काफ़ी बची सघो था। ऐं जेको अॼुकल्ह जो दौरु आहे, डिप्रेशन जो दौरु आहे, ऐं अव्हां जेको आहे सो घणा घरनि में वेही करे घणी मोबाइल इस्तेमालु कंदा, इन खां बहितर इहो ई आहे त अव्हां ॿाहिरि जेको आहे सो स्पोर्ट्स में जेको आहे सो हिसो वठो, कुझु रांदियुनि में, कुझु वॉक में, त इन सां बि जेको आहे सो तबियत ते तमामु घणो जेको आहे सो फ़ाइदो पए थो। तव्हां डिप्रेशन खां बची सघो था, बेकार ॻाल्हियुनि खां बची सघो था, बेकार ख़्यालातनि खां बची सघो था। सुठा ख़्यालात हूंदा ऐं तव्हांजी ज़िंदगी सुठी गुज़री सघे थी, अव्हां होर सारी बीमारियुनि खां जेको आहे सो बची सघो था। जी सर,
1: तमामु बहितरीन। दोस्त तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेरापुर FM 94 जे स्टूडियो मां लाइव अव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेकी सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचार ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। वज़रीअ लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। 0301 91 8051 अहसन साहब खे चवंदासीं त उहो बि कुझु बीमारियुनि बाबति ॿुधाइनि असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे, जेकी दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु, हफ़्ते जा 6 ॾींहं क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उनखे बग़ैर ऑपरेशन जी कामयाबु इलाज कयो वञे थो। नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, पाइल्स आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। 0301 91 8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी अव्हांखे सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि।
3: जीअं त असां माहिर अमराज़ कुझु बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, जीअं गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु ऐं नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाले जे खंघु, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं ऐं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि में न वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।
1: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301 91 8051 प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। अक्सर करे मरीज़ लाइलाज थी करे वॾनि वॾनि इस्पतालुनि मां, वॾनि वॾनि शहरनि मां वापसि थी करे वरी बि प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु वटि ईंदा आहिनि ऐं अलाह ताला जे हुकुम सां हर इलाज मौजूदु आहे। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे। डॉक्टर साहबु इलाज कंदो आहे ऐं यकीन अलाह ताला जे हुकुम सां ई रिज़ल्ट मिलंदो आहे, माण्हुनि खे शिफ़ा मिलंदी आहे। जॾहिं शिफ़ा मिले थी तॾहिं इंसान जी पंहिंजी दिलि हिकिड़ी मुतमैन हूंदी आहे। त प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ई आवाज़। हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, गॾु गॾु रहिजो, ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94।
4: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003385 69।

0: मादो सफ़ा जो कासो गरम किया
1: बस मादो गरम थी जो आरंदो गर्मी वरी मादो गरम पो कुछ वणे को हन छा कयो गाडे वणो पो
0: सही को दवा जो का दस दस जो
1: दस बे जाम माने दवा बे जाम आ रुगो मानो इस्तेमाल करे प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब बैठो आ कोटड़ी कबीर 8 किलोमीटर मेरा पर 10 मिनट में डायरेक्ट मेरा पर वदन बोटा पेट्रोल पंप जे बिल्कुल सामो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ॿुधनि सां हिन जो इलाजु मौजूदु आहे अलहमदिल्ला हुन जो अॼु त डॉक्टर साहिब जो मौज़ू ई इहो एच पाइलरी मादे जी तकलीफ़ एच पाइलरी थींदी मादे जी तकलीफ़ जे करे आहे पहिरियों शुरूआती मादे जी तकलीफ़ थींदी आहे उनखां बाद में अॻिते हली हली जॾहिं असीं उहो केयर नाहियूं कंदा तवजो नाहियूं ॾींदा पोइ वञी एच पाइलरी थींदी
0: आहे
1: ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ ॿुधो एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो
2: जी बिल्कुलु हिकु त जेको आहे सो मादे जो जो मां पहिरें ॻाल्हि ॿुधाई त खोड़ सारी वजूहात हूंदियूं आहिनि स्मोकिंग बि माण्हू घणा कंदा आहिनि चांहि जो इस्तेमालु घणो कंदा आहिनि गर्म शयूं घणियूं खाईंदा आहिनि या हार्ड वर्किंग घणनि जी हूंदी आहे डिप्रेशन जे करे ऐं जेको आहे सो घणे खाइण जे करे वर्किंग खे न करण जे करे घणनि जो ऑफिशियली वर्क हूंदो आहे उते ई खाई उते ई वेठा हूंदा आहिनि त इन जे करे बि मानी सही हज़म न थींदी आहे उन जे करे बि जेको आहे सो मैदो ब्लूमिंग फाले फुलजी वेंदो आहे ऐं पोइ उहा तकलीफ़ एसिडिटी थी वेंदी आहे सो इन जे करे जेको आहे सो बहितर आहे त हर खाधे खां बाद में सौंफ चूसणु तमामु ज़रूरी आहे रोज़ाना राति जो अधु चमची सौंफ जी अधु चमची जीरो अधु चमचो जाण पाणी में काढ़े पाणी में छाणे तव्हां विझी रखी छॾियो सुबुह जो उन में काढ़े ऐं छाणे उहो काढ़ो जेको आहे सो तमामु बहितर आहे जेको मादे खे पीअण सां जेको आहे सो जेके बि हाज़मे जो सिरिश्तो आहे उनखे हू बिल्कुलु सही करे छॾियो आहे इन जे करे ऐं उन खां अलावा जेकॾहिं कब्ज़ बि रहे थो त रोज़ाना राति जो नीम गरम खीर में इस्पंगुल जो साशे वठी आहे इस्पंगुल जो छिलको जेको हूंदो आहे उहो चमची राति जो खीर में विझी ऐं उहो इस्तेमालु कर उन सां बि मादो थधो बि रहंदो ऐं हाज़मो बि अवांजो बहितरु रहंदो कब्ज़ खां बि तव्हां बची सघंदो पर गॾोगॾु इहो सिर्फ़ु हिकिड़ी खाइण जी हद ताईं बहितरु आहे लेकिन इन जे लाइ एहतियात तमामु ज़रूरी आहे हिकु त जीअं मां पहिरियों ॻाल्हि कई त चांहि जो इस्तेमालु घटि ॻाढ़ो मिर्च बंदि तरियल शइ जोशो इहो थींदो आहे जो माण्हू ॿाहिरि निकिरे थो बर्गर बारबिक्यू अहिड़े क़िस्म जूं मुर्गन ग़िज़ाऊं या कुझु बिरयानी वग़ैरह इहे शयूं घणियूं खाइण सां तकलीफ़ वधंदी आहे इन जे करे इन जी जॻह ते थधियूं शयूं खीर जो इस्तेमालु फ्रूट जो इस्तेमालु करणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं जीअं मां पहिरियों ॻाल्हि कई त खाधो खाई ऐं पाणी यकदमि न पीजे पाणी अधु कलाकु मानी खां अॻे पीअणु घुरिजे ऐं मानी खां कलाक खां बाद में पाणी पीअणु घुरिजे इन सां वधीक जेको आहे सो यानी अव्हांखे रिलीफ़ मिली सघे थो जी सर
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेरा पर एफ एम 94 जो आवाज़ु तव्हांजे समातुनि में पहुचे पियो प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ वेंदासीं हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे बहरहाल कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु 0301-9196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे अव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था 0301-9196-851 डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचार ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि हर जुमे छंछरु ऐं आचर ते यानी हफ़्ते जा 3 ॾींहं चेकअप फीस डॉक्टर साहिब जी बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे बिल्कुलु मुफ़्त हूंदी आहे जुमो छंछरु ऐं आचर यानी हफ़्ते जा 3 ॾींहं चेकअप फीस बिल्कुलु मुफ़्त आहे बिल्कुलु फ्री आहे तव्हां डॉक्टर साहिब खे कंहिं बि वक़्तु ॾेखारे सघो था हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु ऐं आचर ऐं सूमर ते यानी हफ़्ते जा 4 ॾींहं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अंगारे वारे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे डॉक्टर साहिब जी प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिरु डॉक्टर आहे कॾहिं बि तव्हांखे मायूस नाहे थियणो का बि बीमारी लाइलाज नाहे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिरु डॉक्टर आहिनि पिते जी पथरी आहे गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी पायल्स आहिनि नक जी हॾी वधियल आहे गले जा गुदूद आहिनि उन्हनि जी बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर पंजाब खां वठी करे बलोचिस्तान खां वठी करे पूरी सिंध खां डॉक्टर साहिबु वटि मरीज़ ईंदा रहंदा आहिनि हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो
3: अस्सलाम वालेकुम केरु आहीं किथां खां छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां जी कब्ज़ी थी रहे ठीकु आहे एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिब मूंखे ॿुधाए थो
2: जैसे ये साॻी मादे जी मसाइल आहिनि ऐं मादे जे करे ई जेको आहे सो जॾहिं मादो अव्हां जो सही वर्क न कंदो आहे त इन जे करे ई अव्हां खे कब्ज़ ऐं कब्ज़ अव्हां खे ख़बर आहे त हर मर्ज़ जी माउ जेको आहे सो सॼो वेंदो आहे इन जे करे कब्ज़ जा बि खोड़ सारा सबबु आहिनि वॾे में वॾो सबबु हिकु त राति देरि ताईं जागणु निंड जो सही जेको आहे सो न हुजणु ऐं ॿियूं के अहिड़ियूं मेडिसिन्स माण्हू एंटीबायोटिक्स वग़ैरह या कुझु का अहिड़ी बीमारी लॻियल हूंदी आहे कुझु को दवाऊं दवाउनि जा साइड इफेक्ट्स जे करे बि जेको आहे सो कब्ज़ रहंदो आहे ऐं चांवर जो इस्तेमालु ज़्यादा हुजण जे करे खीर न पीअण जे करे बि इन जे करे खीर जो इस्तेमालु पंहिंजे रूटीन में आणे उनजी दवा होम्योपैथिक में थींदी आहे तव्हां बिल्कुलु रूबरू ॾेखारे सघो था।
3: हीअ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल चैनल ते असां केरु आहे? अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
3: केरु किथां ॻाल्हायो
0: था? साईं मां खेरपुर खां।
3: छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां?
0: डॉक्टर साहब खां इहो पुछण था चाहियूं केॾी महिल केॾी महिल हमरा अॻे माना दिमाग़ में सूर थो पवे।
3: अच्छा, उमिरि घणी आहे?
0: उमिरि साईं 36 साल।
3: अच्छा ठीकु आहे, डॉक्टर साहब खां ॿुधाए थो।
4: अधु मथे में सूर थो पए, सॼे मथे में सूर थो पए?
0: साईं खाॿे पासे, अधु में।
4: अधु मथे में सूर थो पए, उहो बि खाॿे पासे में? वरी पाण नथो ॻाल्हाए, तोखे थो चए भला, ज़ुबान कोन अथसि छा?
2: मैग्रीन पेन इनखे चइबो आहे, यानी हिक पासे ॾांहुं ॿिए पासे जेको सूर वञे त माइग्रेट मां निकितल हूंदो आहे, यानी माण्हू जेको आहे मैग्रीन पेन इनखे चइबो आहे। पोइ चाहे कंहिंखे सॼे पासे बि पइजी सघे थो, कंहिंखे खॿे पासे बि पइजी सघे थो। अहिड़े पेशंट खे जॾहिं तकलीफ़ वधी वेंदी आहे त पोइ ईअं तकलीफ़ महसूसु थींदी आहे ॼण मथे में हथोड़ा लॻनि पिया, ऐं अंधेरे में तकलीफ़ हुनजी वधंदी आहे, ऐं मिठाण खाइण सां हुनजी तकलीफ़ वधंदी आहे, ज़्यादा ॻाल्हाइण सां हुनजी तकलीफ़ वधंदी आहे। इन जे करे उनजी दवा जेको आहे सो मेडिकल में केतिरी बि सिर्फ़ु आराम खां सवाइ ॿी का बि टेबलेट दवाई हुनखे न ॾींदा आहिनि, ऐं उहा बिंग सिर्फ़ु टेम्पररी टाइम लाइ हूंदी आहे, को बि उनजो इलाजु न आहे। असां वटि अलहमदिल्ला अलाह ताला जा करोड़े अहसान आहिनि, इन मर्ज़ जे बारे में बि असां वटि व्यूज़ मौजूदु हूंदा आहिनि, ऐं इन मर्ज़ जो बि असां कामयाबु हद ताईं 101% असां 10% इलाजु कयो आहे ऐं कामयाबु वियो आहे। कंहिं बि पेशंट खे ऐं ख़ासि करे इहा अलामत औरतुनि में बि ज़्यादा थींदी आहे, मर्दनि में बि थींदी आहे, लेकिन औरतुनि में कुझु ज़्यादा ई थींदी आहे, उन जूं ॿी वजूहत आहिनि। लेकिन हिन अदे खे जेकॾहिं इहा तकलीफ़ आहे त मां उनखे सिर्फ़ु मशवरो इहो ॾींदुसि त ॿी दवा खे छॾे करे होम्योपैथिक हुनजी ट्रीटमेंट कराए, इनशाला ताला कुझु ई अरसे में इहो अदो ख़ुदि अव्हांखे पाण व्यूज़ ॿुधाईंदो त मुंहिंजी तकलीफ़ छॾे वई आहे इलाज हुकुम सां।
4: ख़तमु थी वियो डॉक्टर साहिबु, आख़िर में कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा आहीं? ऐं चाहींदुसि त तव्हां जेके ॾींहुं वेहो था क्लिनिक ते उहो बि दोस्तनि खे ॿुधायो, पंहिंजो नंबर बि नोट कराए छॾियो, कहिड़े कहिड़े टाइम असां राबितो करे सघनि था डॉक्टर साहिबु?
2: जंहिंसीं क्लिनिक जो शेड्यूल टाइम अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जुमो, छंछर, आचर, सूमर, अरबा, खमीस, अंगारे जो ॾींहुं क्लिनिक असांजी बंदि हूंदी आहे। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं। अलबत्ता दवा मरीज़ खे पंहिंजी वठणी पवंदी आहे, ऐं अहिड़े तरीक़े सां टाइमिंग जेकी आहे सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं क्लिनिक जी एड्रेस जेकी हूंदी आहे कोटड़ी रोड साम्हूं वज्रपुटा पेट्रोल पंप ऐं जेको सो मेहरापुर शहर, इहो ज़रूरु यादि कंदा। ऐं आख़िर में पैगाम सभिनी दोस्तनि जे लाइ, ख़ासि करे यंगर्स जे लाइ इहो ई आहे त माउ पीउ जंहिंजो जहिड़ो आहे उन जे लाइ तमामु जेको आहे सो गनीमत आहे, ऐं उनजी ख़िदमत ज़रूरु कंदा करियो। ऐं माउ पीउ जी ख़िदमत करण सां माउ जे पेरनि जे हेठां जनत आहियो तव्हां ॿुधो ई हूंदो, लेकिन माउ पीउ जी ख़िदमत करण सां बि अव्हांखे न सिर्फ़ु जनत मिलंदी बल्कि अव्हांजो सारियूं जेके तकलीफ़ूं आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदियूं। वॾी महिरबानी, दुआनि में ज़रूरु यादि।
4: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु हुआ, जेके सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया हुआ। प्रोग्राम जो बि वक़्तु पियो अचे थो पंहिंजे पुॼाणी जे तरफ़ वञे पियो, वक़्त जो अहसासु, तंहिंजे करे सभिनी दोस्तनि खां असीं माज़रत बि वठंदासीं जिन खे कॉल्स जिन जूं शामिलु नाहियूं करे सघंदा, ऐं तमामु घणियूं कॉल्स हूंदियूं आहिनि प्रोग्राम में। इन ते अॼु को प्रोग्राम जो बि वक़्तु पियो अचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते, जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो त असांखे पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त, अलाह निगहबान, अलाह वाही।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: सूबन के चैन चैन इंतजामी यूनिट्स में विरण में को हर्ज ना है। वफाकी वजीर अलीम खान पंहिंजे बयान में चयो आहे त सियासतदान ज़िम्मेवारी खणंदे नवन सूबन जी ओनरशिप खणनि। नवन सूबन जो क़याम क़ौमी मसलो आहे, सियासत जे वर न चाढ़ियो वञे। मौजूदा हालतूं मुल्क में नई वर्किंग आर्डर जूं घुर्जाऊं आहिनि, जंहिंमें को बि शक न आहे। केपीअ में हज़ारा सूबे जो मुतालबो नओं न आहे।
2: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: अमरीकी सदर हुर्मस के जल्द अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर चयो त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग ख़तम करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबनाए हुर्मस खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो बि ऐलान कंदुसि। व्हाइट हाउस आबनाए हुर्मस बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो। अमरीका सां ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो फ़ैसिलो नाहे कयो। पैगामनि जी ॾे वटि ॻाल्हियूं नाहिनि हूंदियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची चयो त इस्लामाबाद मफ़ाहमत नामे में जंगबंदी न पर जंग जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि थी हुई, जंहिंजी अमरीका भंजे कड़ी कई। अमरीका सां राब्तनि लाइ पहिरीं वारा राब्ता हाणे मुयसरु न रहिया आहिनि। तहरान अमरीका सां राब्तनि लाइ वक़्ती रस्तो तयारु करे रहियो आहे, जेको बाद में मुस्तक़िल रस्तो बि थी सघे थो।

एक्टा आहे जंहिंमें सभ खां वधीक जेका आहे त माइनर जी राइट्स ऐं माइनर जी जेका आहे त वेलफेयर जे लाइ वधीक कंसिडरेशन कई वई आहे. सो इन ही टॉपिक ते असां वधीक गुफ़्तगू कंदासीं. असां सां गॾु एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि, जिन खे असां स्टूडियोज़ में वेलकम चवंदासीं. शहबाज़ हफ़ीज़ साहब तक़रीबन 10 ईयर्स खां एडवोकेसी सां वाबस्ता आहिनि.

0: में भी पवंदो आहे प्लस में पंहिंजी ऑडियंस खे नज़र में रखी करे असांखे जेको आहे न सिंपल खां सिंपल ब्रीफ बि करणो
1: राइट. ऐं बिल्कुलु ई सर तव्हांजी ॻाल्हि कई क्यूरियोसिटी हूंदी आहे, न सिर्फ़ु असांजी क्यूरियोसिटी बल तमामु घणी तव्हां नॉलेज में असांजी इज़ाफ़ो कंदा
0: आहियो.
1: माज़ी में असां जेके बि टॉपिक्स करे चुका आहियूं, न सिर्फ़ु मुंहिंजी बल्कि जेके असांजी ऑडियंस आहिनि उहे प्रोग्राम जॾहिं ॾिसंदा आहिनि त पंहिंजो फीडबैक ॾींदा आहिनि, जेको मां तव्हां ताईं बि
0: तमामु हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि हिन में एड कयां त जॾहिं खां मिसल मां हर प्रोग्राम जी हिन में पंहिंजो नंबर बि शेयर कंदो
1: आहियां, ईअं आहे.
0: मूंखे कुझु व्हाट्सएप ते, कुझु मोबाइल ते, कुझु SMS ते कुझु फीडबैक बि मिलियो आहे. मां चयो मां शेयर करणु चाहियां थो तव्हां सां. त जॾहिं मां रिसेंटली तव्हांजे ॾिनल को क्लिप मां जॾहिं पंहिंजे फेसबुक अकाउंट ते रखी ऐं उतां मूंखे हिकिड़ो फीडबैक मिलियो ऐं मुंहिंजे मोबाइल में मैसेज ते बि फीडबैक
1: मिलियो,
0: कुझनि कॉल करे चयो चए साईं टू कन्वर्ट दिस इन टू इन उर्दू, की अगरि ईंदड़ टाइम में अगरि तव्हां कोशिशि कयो कुझु अहिड़ा टॉपिक्स जेके तव्हां सम्झो था की हे हिनखे वाइडर रेंज ॾियणी आहे, ऑडियंस खे वधाइणो आहे, त कुझु टॉपिक्स अहिड़ा हुजनि जेके तव्हां अॻिते हली करे हिनखे उर्दू में कजो. भले तव्हांजो सिंधी मीडियम हुजे, वी डू अप्रिशिएट, वी डू लाइक इट, पर असां इहो चवंदा आहियूं त कुझु प्रोग्राम जेके सम्झो था त हिन जो अप्रोच वधीक आहे, इहो ज़्यादातर माण्हुनि ताईं पुॼणु खपे, त कुझु प्रोग्राम्स अहिड़ा हुजनि जेके तव्हां असांखे हिनखे उर्दू में मैनेजमेंट ताईं ऐं बाबर ताईं इहा ॻाल्हि पुॼाईंदो.
1: बिल्कुलु,
0: अगरि हू चाहींदा त असां हिनखे उर्दू में कन्वर्ट कंदासीं इनशाला. ऐं ज़रूरत पवंदी कुझु प्रोग्राम्स उर्दू में, कुझु सिंधी में, त असां हिनखे कैरी ऑन कंदासीं, छोकी लीगल प्रोग्राम जो पर्पज़ इहो आहे त माण्हुनि ताईं इल्म जी ॼाण प्लस में कानूनी ॼाण हर माण्हू जे अप्रोच में न हूंदी आहे. अगरि वंस हिनखे अगरि कानूनी ॼाण मिली थी वञे त हू ॻाल्हाइण जे लाइक़ु था थी वञे. माना ईअं सम्झो त जेके गुंगे खे ज़बान ॾेई छॾिबी आहे, अगरि माण्हू खे पंहिंजे राइट जी ख़बर पइजी थी वञे त हो हिकु स्टेप ॿाहिरि थो निकिरी अचे पंहिंजे राइट जे करे, पंहिंजे हक़ जॾहिं सम्झे थो पियो त हुनखे ॻाल्हाइण बि अचे थो पियो, पंहिंजो हक़ वठण बि ॼाणे थो पियो.
1: ऐं हिन में तव्हांजो तमामु सुठो किरदारु आहे, तव्हां जेको आहे त लॉ जे बारे में जेका नॉलेज ॾियो पिया तमामु घणी एप्रिशिएट.
0: बेसिकली इट इज़ योर ओन विजन, इहो तुंहिंजो विजन आहे. हिनखे जेतिरो आहे अञा प्रमोट कंदा था
1: वञो.
0: वंस अगेन मां तव्हांखे जेको आहे न मुबारक बि ॾींदुमि हिन ॻाल्हि ते त तव्हां रिसेंटली हाणे पंहिंजी जेको आहे न शॉर्ट क्लिप्स ठाहिण बि शुरू कयूं आहिनि, की जेतिरो थी सघे त असां लॉ जी नॉलेज खे इम्पार्ट कयूं, छोकी हिन ते तमामु लिमिटेड प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि, छोकी जनरल प्रोग्राम्स ई बि हूंदा आहिनि. मिसाल गाननि जा प्रोग्राम बि थी वेंदा आहिनि, एंटरटेनमेंट जा प्रोग्राम थी वेंदा आहिनि, हेल्थ जा प्रोग्राम थी वेंदा आहिनि. हिननि ते स्पेशली थोरा घटि प्रोग्राम हूंदा आहिनि. बहरहाल तव्हांजे तवसुल सां ऐं तव्हां जहिड़ा अलाई केतिरा टैलेंटेड माण्हू ॿाहिरि वर्कआउट करनि था यूट्यूब जे थ्रू, सोशल मीडिया जे थ्रू, की माण्हुनि खे असां लीगल अवेयरनेस ॾियूं. सो असांखे बि ख़ुशी थिए थी की असांखे पंहिंजो जेकी अलाह जी तरफ़ां मौला जी तरफ़ां असांखे इल्म आहे असां ओतिरो इम्पार्ट कयूं था, इहो बि सदिके जारी आहे हिकिड़े क़िस्म.
1: बिल्कुलु ईअं आहे.
0: छोकी मां वरी सघे मां तव्हांजे प्रोग्राम जे तवसुल सां मज़र सां तव्हां इहो फील कंदा हूंदो सर, वन एंड हाफ ईयर असांखे थी वियो, ॾेढ साल खां असांखे मथे थी वियो प्रोग्राम कंदे कंदे. मां हमेशह हिकिड़ो लफ़्ज़ रिपीट कंदो आहियां की मौला जो फ़रमान आहे की इल्मु तव्हां वटि ॿिए जी अमानत आहे.
1: बिल्कुलु ईअं आहे.
0: ऐं जॾहिं अमानत आहे त पोइ असांखे ॿिए ताईं बि पुॼाइणी आहे. कोशिशि कंदा आहियूं की बेस्ट खां बेस्ट ॾियूं ऐं बेस्ट खां बेस्ट सोल्यूशन बि ॾेई सघूं,
1: बिल्कुलु,
0: जे माण्हुनि खे हुननि जा पंहिंजा सोल्यूशन ऐं रेज़ोल्यूशन्स मिली सघनि हुननि जे इशूज़ जा.
1: ऑल राइट. सो सर तमामु बहितर, तव्हां सुठो असांखे जेको आहे त स्टार्टिंग में तमामु सुठी गुफ़्तगू कई आहे. हाणे असां टॉपिक ते असां अचूं पिया, जेको असांजो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 आहे. वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट?
0: बाबर, द सोल पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट इज़ टू विद द वेलफेयर ऑफ द माइनर. ॿार जी परवरिश कीअं कजे, ॿार जी कस्टडी जो, ॿार जे लाइ कहिड़ो गार्डियन अपॉइंट कजे, ॿार जी स्कूलिंग. ऐं बेसिक पर्पज़ इहो आहे की जॾहिं बि को ॿारु जेके असां वॉर्ड चऊं, अगरि उनजी पेरेंट्स जे थ्रू या डाइवोर्स थी वञे, पीउ माउ जी डाइवोर्स थी वञे, पीउ माउ कहिड़े बि तरीक़े सां सेपरेटेड थी थो वञे, या उहो ॿारु ऑर्फनेज थी थो वञे, यतीम थो थी वञे, त उनजी परवरिश ऐं उनजी वेलफेयर जे लाइ इहो एक्ट क्रिएट कयो वियो. दैट इज़ कॉल्ड गार्डियन इन वॉर्ड एक्ट.
1: इट्स पर्पस, ठीक है,
0: सोल पर्पस इन जो हिन एक्ट जे थ्रू प्रोसीजर ॿुधायो वियो आहे, तरीक़ा ॿुधाया विया आहिनि त कंहिं ॿार जो गार्डियन कीअं अपॉइंट थींदे, कंहिं ॿार जी कस्टडी कीअं ॾिजे, कंहिं ॿार जी कंहिं बि ॿार जी जेको कहिड़े बि तरीक़े सां पंहिंजे पीउ माउ खां विछड़ी चुको या ऑर्फनेज थी वियो आहे, उनजी वेलफेयर कीअं कजे ऐं हुनजी प्रॉपर्टी जी वेलफेयर कीअं कजे, उहो सॼो जो सॼो एक्ट इन सां ई एसोसिएटेड सां ई रिलेटेड आहे.
1: ऑल राइट. ऐं सर हिन में जीअं हाणे हिन एक्ट में तव्हां पर्पस असांखे ॿुधायो, हिन में कुझु डेफिनेशन्स आहिनि जीअं गार्डियन थी वियो, माइनर थी वियो, वार्ड थी वियो, त इन ते अव्हां असांखे ॿुधाईंदा त गार्डियन छा आहे, माइनर छा खे पियो चयो वञे, एज़ वेल एज़ वार्ड छा खे पियो चयो वञे.
0: एक्ज़ेक्टली बाबर, हिन एक्ट जे मुताबिक़ माइनर जो मतिलबु आहे की उहो ॿारु that has not attained the age of 18 years.
1: All right.

0: 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਨਪੁਗ ਹੋ ਜੀ
1: ਅੰਡਰ 18 ਮਤਲਬ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਕੜੋ ਲਾ ਹੈ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਕਟ 1758 ਮਨ 1758 उन एक्ट के मुताबिक बार वही बालिक चवराइंदो जो 18 साल की एज से पुरी चुको हों जी रिसेंटली मैं क्लिप डिठी पाकिस्तान पीएम में भी डेफिनेशन बुधाया
1: yes, yes.
0: तो माइनॉरिटी ए मेजॉरिटी में फर्क हो माइनॉर माइनर उनके ही चो जो 18 का हेठ हो अस गाल चुंदा वार्ड हाँ बुधवार यो बुधा तो माइनर ए वार्ड में फर्क
1: डिफरेंस
0: माइनर ए वार्ड में सिर्फ यो फर्क है कि वार्ड वो हों जैसे लाइ अस कस्टडी वन आया कोर्ट का सीख क्यों था ठीक है कड़े भी तरीके से चाहे वो असेंगे डिजिटल तरीके से मिले डिफेक्टो तरीके से मिले टेस्टामेंट्री तरीके से मिले या नेचुरली मिले जैसे अस गार्डियनशिप सीख क्यों था उनकी प्रॉपर्टी जो भी लुक आफ्टर कहें अगर कंखे अस गार्डियन अपॉइंट था क्यों उनकी प्रॉपर्टी की भी लुक आफ्टर करें नंढे मासूम बार की भी लुक आफ्टर करें वार्ड गार्डियन अस उनके चाहो उन बार जी सार संभाल लहण जी जिम्मेदारी खणी
1: ठीक है
0: चाहे पो उनके कोर्ट अपॉइंट करे चाहे वो नेचुरली तरीके से अचे या उन जो को क्लोज रिलेटिव या नेक्स्ट कोई भी फ्रेंड या गार्डियन थी सके तो दैट इज कॉल्ड गार्डियन
1: मींस बारे जी का वेलफेयर करे पियो माइनर जी या वार्ड जी तो उनके गार्डियन असा चाहे
0: गार्डियन में या तो दिसो ना उन जी ये समझो तो उन जी कस्टडी भी उनके दिनी वेंदी उन जी प्रॉपर्टी जी कस्टडी भी उनके दिनी वेंदी जेकी उन जे पेरेंट्स जे थ्रू उनके मिले थी पई या अगर ऑर्फनेज या उन जे विरासत में कुछ अचे तो पे हुआ शे तो गार्डियन कोर्ट अपॉइंट कंदी आ वो उनकी सारी सार संभाल लो बल्कि उनकी पूरी वेलफेयर ताई उन सा गड हो जैसे वो बार 18 साल जो नतो थी सके या पान right. बालिक नतो थी वने
1: ऑल राइट सो सर असा गार्डियन दी अचो तो इन जो जके अंत केडियो जके अंत काइंड्स एंड जे डिफेक्टो गार्डियन थी सकन था डी जो एज वेल एज नेचुरल गार्डियंस थन पे तो उन थी थोड़ा असा
0: हां ये दीस आर द फोर काइंड्स ऑफ उन का भी लाई थी सकन पर एज पर गार्डियन एक जे हिसाब से देयर इज अ
1: फोर काइंड्स मार्शल ता के
0: जी जी फोर काइंड्स ऑफ जोकन गार्डियनशिप होंगे सबका पहले होंगे ताजा नेचुरल गार्डियंस
1: ओके
0: नेचुरल गार्डियंस वे होंगे जेके बायोलॉजिकली असा के अल्लाह की तरफा द गिफ्ट ऑफ द गॉड शब्द होंगे के पीमा मदर एंड फादर
1: वे नेचुरल गार्डियंस
0: दी द नेचुरल गार्डियंस ठीक है डाडो डाडी द वेजो ही नेचुरल गार्डियन थी है क्योंकि वो बायोलॉजिकल गार्डियन असा जा असा के नेचुरल गार्डियन चो ठीक है अगर मिसाल सपोज बिनन मा को एकड़ो फौत तो थी वने उनको जो वेरी नेक्स्ट गार्डियन होंगे उनकी मदर होंगी अगर मदर फोत थी थे तो उनको फादर होंद अगर बिन्न में कोई फोत तो थी तो नेक्स्ट गार्डियन उनको डाडो हों डी होंगी
1: नेचुरल
0: गार्डियन छो तो उनको क्लोजन ब्लड लाइन से ताल्लुक रखन
1: थार
0: दीज आर कॉल्ड नेचुरल गार्डियंस वो तीन डिफेक्टो गार्डियंस सपोज इन में कोई भी ना तो चाचो मामू
1: ओके
0: सपोज अगर वो नंढो बार तो उनको सोट थी सके तो उनको भा थी सके तो इवन उनकी सिस्टर थी सके थी सपोज कदें कदें ये भी थी कि अगर मदर जी फादर जी बी शादी थे हुए तो उनकी जी सेकंड मदर है स्टेप मदर
1: वो
0: भी डिफेक्टो में अची सके थी मकसद यो तो बार जी वेलफेयर के दिसणो पवंदो बार के बार जी सही संभाल मन बार जी नरिशमेंट नर्चर ए नेचर बिन बार जी जी किन सुठे तरीके सा थे जी असा नवरिशमेंट चवन पेट्रोनिक चवन सरपरस्ती बार की सुठी थी उनके चवन डिफेक्टो
1: कोर्ट
0: में कोर्ट की परमिशन वठने की जरूरत ना वो पान भी कस्टोडियन थी दिन तंजा डिजोर
1: डिजोर
0: डिजोर जो पर्पज ही सिर्फ यहाँ इन में कोर्ट ही अपॉइंट कंदी कि हे मानू इन बार के लिए तमाम बेहतरीन कस्टोडियन ए गार्डियन साबित थी सकंदो ठीक है उनके साथ चंदो डिजो जो कि कोर्ट अपॉइंट
1: जी जी जी
0: देन देयर कम्स अ टेस्टामेंट्री गार्डियन टेस्टामेंट्री गार्डियन इन मतलब आ के अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द डिसीज पेरेंट या डिसीज नेचुरल गार्डियन के मुझी फोत थण खा पो जे जो फलानो कंसर्न आ चाहे उनमें चाचो थी सके तो उनमें भा थी सके तो उनमें मदर थी सके थी सपोज डाडो थी सके तो पी पेंजी हयाती में यो विल लिख रहा है इनके साथ टेस्टामेंट्री टेस्टामेंट्री
1: चो ना
0: माने विल जे थ्रू के इंस्ट्रूमेंट जे थ्रू डिक्लेयर करे वने तो सपोज शहबाज है सपोज बाबर या सपोज कोई भी मुझे बार जो है इंदर टाइम में जो ना गार्डियन थी मुझे बिहाफ थे उन्होंने टर्म इस्तेमाल कर पॉजिटिव सेंस यूरोप में लफ्ज इस्तेमाल खास कर अमेरिकन सोसाइटी में लफ्ज इस्तेमाल द गॉडफादर सरपरस्ती करें जो घोट फादर हो घोट फादर मतलब सार संभाल
1: सार संभाल
0: पी माँ के मरण का या उनकी अगर सपोज डाइवोर्स हुई या हालात इलाही खराब थी बार बिन्हीं महीनों से वन चाहे छो कि उनका मेंटल है फिजिकल सिचुएशन बार की ना वो थी सके तो बार अब सुठी परवरिश न मिली सके तो उन सिचुएशन में गॉड फादर अपॉइंट कि माना अस इन बार की संभाल असा हल्दा दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ
1: जी टेस्टामेंट्री गार्डियन इन में ये है मिसाल को लेट सपोज के फादर जो उनकी खबर होंगी है हाँ मुझे वक्त करीब है डेथ करने वालों है तो उनका पैरों पाँच विल लिखी छो है यार मुझे चिल्ड्रन की वेलफेयर कह उनकी ये चई
0: चई अगर इन महंगे चाहिए तो हयाती में भी हयाती में भी डिक्लेयर कर सकता पर थ्रू विल वालिद पेंजी हयाती में या मदर पेंजी हयाती
1: अच्छा मदर भी करे सके माने
0: नालो जो लव पेरेंट पेरेंट जो मकसद ये होता है कि मतलब नो द फादर ही हो जाए पेरेंट्स माने बिन ब शय माने फादर एंड मदर मिलंदा तो पेरेंट्स अटरिंगना
1: ओके
0: तो बिन में कोई भी डिक्लेअर करे सके तो मुझे मरण का पो मुझे बार की परवरिश ने हवाले मुझी तरफ जेके भी प्रॉपर्टी लेफ्ट थी या जेकी बार दी वेंदी ट्रांसफर थी उन जी भी सार संभाल हे लहंदो मैं एक मिसाल लिया तमाम तमाम बेहतरीन अगर असा बुढ़ने वाले में भी कुछ अड़ा होंदा मुख्य उम्मीद होंगी कि उ डीसी कॉमिक्स का वो या बैटमैन का जो ना अवेयर अवेयर हों उनमें रोल हों बटलर जो ब्रूस वेन वो मशहूर करेक्टर आ बेसिकली जो बैटमैन आ उन अल्टर ईगो ब्रूस वेन आ ब्रूस वेन जो अल्टर ईगो बैटमैन
1: आ
0: जैसे वो कें भी तरीके से या कुछ भी हालात खराब थी वेंदन गोथम सिटी में तो उनका पेरेंट्स मारजी वेंदन जैसे पेरेंट्स मारजी वेंदन तो बटलर हों वो बैटमैन की प्रॉपर्टी का वी कर बैटमैन की एजुकेशन का वी कर ब्रूस वेन की एजुकेशन का वी कर जेस तीन वो पा अची कर एडल्ट नो थे तो उनको बटलर ही सी सिचुएशन सी उनके संभाली इन में ये समझो तो बाय डिफेक्ट भी थी डिफेक्टो भी थी डिफेक्टो भी थी डिजोर भी थी एंड टेस्टामेंट्री गार्डियन भी माना इन में वो बटलर ही प्लेज अ रोल ऑफ फादर मदर टीचर उनको गार्डियन सजो रोल प्ले तो करे वो मिसाल है अगर अस बुधवारे
1: लगो
0: समझी होंदा
1: अच्छा सर ये गार्डियन अपॉइंट केर कंदो आहे
0: गार्डियन अपॉइंट करण जे लाइ पहिरों त मां तव्हांखे डिफेक्ट हुजे कोई भी थी सघे
1: थो डिफेक्ट टू अंडरस्टूड आवर पेरेंट्स खां बाद में उन जा
0: ज़रूरत
1: हूंदी यस
0: कॾहिं कॾहिं छा हूंदो आहे त असां कोर्ट जे थ्रू परमिशन वठंदो त वी वॉन्ट टू बी द गार्डियन ऑफ दैट पर्सन मिसाल कुझु केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि की प्रॉपर्टी इलाही वारसनि ते मुश्तमिल हूंदी
1: आहे
0: कुझु माइनर्स हूंदा आहिनि कुझु मेजर हूंदा आहिनि त सपोज़ अगरि मां बैंक जो ई मिसाल वठां अगरि वार्ड जी असां प्रॉपर्टी जो ज़िक्र वठूं त ॿिनि क़िस्मनि जी प्रॉपर्टी थींदी आहे हिकिड़ी इमोबल प्रॉपर्टी थींदी आहे हिकिड़ी
1: इमोबल
0: प्रॉपर्टी थींदी आहे सो इमोबल प्रॉपर्टी मां तव्हांखे ख़बर आहे घर लैंड हूंदो कोई भी प्लॉट हूंदो उनजी लुक आफ्टर ॿार जी करणी आहे वठणी आहे असांखे किथे मिसयूज़ न थी वञे या सेल आउट न थी वञे या मॉर्गेज ते न हली वञे या कोई पंहिंजे फ़ाइदे जा हिनखे रेंट आउट ते न ॾेई छॾे सो ॿियूं हूंदियूं आहिनि मूवेबल प्रॉपर्टी जंहिंमें तव्हांजा बैंक्स थी वेंदियूं तव्हांजी ज्वेलरी थी वेंदी आहे तव्हांजा बॉन्ड्स थी वेंदा आहिनि ऐं उहे बॉन्ड्स सपोज लखनि में करोड़नि में आहिनि त लॻे ॿार नंढा
1: आहिनि त
0: हुनजी वेलफेयर जे लाइ कुझु न कोई त गार्डियन अपॉइंट थियणु खपे सो कोर्ट में कोई बि माइनर जे लाइ वञी करे पंहिंजी गार्डियनशिप वठी सघे थो त बाबा जेसि ताईं ॿार वॾो न थींदो तेसि ताईं मां हिनजो लुक आफ्टर कंदुमि छो त मां हिनजो क्लोज़ ऐं नियर रिलेटिव आहे हुन में कोई बि थी सघे थो पियो
1: मतिलबु कोर्ट जेको आहे
0: कोर्ट अपॉइंट कंदी
1: बाक़ी हाणे फादर एंड मदर बि हयात आहिनि हुननि जा जेके आहिनि पाण में जेके आहिनि तालुकात सही न हूंदा आहिनि ऐं जेके आहिनि माइनर अक्सर जेको आहे त बेज़ार हूंदा आहिनि त्यार असांखे न पीउ सां रहणो आहे न माउ सां रहणो
0: मेंटल कंडीशन
1: बाबर
0: सभिनि खां जेको वर्स्ट डिसीशन आहे जेको अलाह खे बि नापसंदि आहे उहो आहे की अगरि कोई बि पेर डाइवोर्स वठे सभिनि खां नापसंदीदा अमल जेको अलाह जी नज़र में आहे उहा तलाक छोकि तलाक सिर्फ़ु ॿिनि पेरेंट्स जे विच में न थींदी आहे ॿिनि खानदाननि जे विच में थींदी आहे ऐं ॿिनि खानदाननि खां बि वधीक जेकी सेपरेशन थींदी आहे उहा ॿारनि जी
1: ॿार जी थींदी आहे
0: जेको ॿारु सफ़र कंदो आहे मेंटली ऐं फिज़िकली जेको ॿारु डिस्टर्ब थींदो आहे उहा कंडीशन असां हर ॾींहुं कोर्ट में ॾिसूं था फैमिली कोर्ट भरी पई
1: आहे
0: जेके असां वॉर्ड कोर्ट चऊं भरी पई आहे हर ॾींहुं एतिरी कंडीशन वर्स्ट हूंदी आहे जो ॿार अगरि पंहिंजे पीउ सां मिलणु अचनि था या माउ सां मिलणु अचनि था हुन ॿिनि कलाकनि में असां हुन जा जज़्बात निकिरंदे ॾिसंदा
1: आहियूं.
0: असां ॿारनि खे रोईंदे ॾिसंदा आहियूं, असां पेरेंट्स खे रोईंदे ॾिसंदा आहियूं, मदर खे रोईंदे ॾिसंदा आहियूं, ॾाॾनि खे रोईंदे ॾिसंदा आहियूं. कुझु कंडीशन्स अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो ॿारनि खे एतिरी त शदीद नफ़रत हूंदी आहे, पीउ खां त पीउ जी शकल ॾिसण बि पसंदि न कंदा आहिनि. कुझु वर्स कंडीशन अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जो मदर खां वधीक केरु आहे, ठीकु आहे न, मदर जी जेकी गोद आहे उहा त हिकिड़े क़िस्म सां त यूनिवर्सल शेल्टर
1: आहे,
0: माउ जो हज़ यूनिवर्सल शेल्टर आहे बचे जे लाइ. पर उहा कंडीशन बि ॾिठी आहे जो ॿारनि जेके अठनि नवनि सालनि जा या मेच्योर थियनि था थोरा, उन्हनि दरवाज़े ते घेरंदे ई कोर्ट में चयो असांखे पंहिंजी माउ जी शकल ई नाहे ॾिसणी. एॾी को कंडीशन वर्स सां करे छॾनि फैमिलीज पाण में मिली करे, त हुनजो अल्टीमेट जेको नुक़सान थिए थो उहो ॿारनि ते थो थिए पियो. ॿार पोइ छा था ठहनि, असां न पीउ ॾे वेंदासीं न माउ ॾे वेंदासीं, त ॿार पोइ हिकिड़ो नयो रस्तो ॻोल्हींदा आहिनि जेके असां चवंदा आहियूं या ॾाॾो या ॾाॾी या नानो या नानी.
1: ओके,
0: ठीकु आहे, त असां हिननि ॾे वञणु पसंदि कंदासीं. एतिरी कंडीशन बि ईंदी आहे त ॿार चवंदा असांखे ऑर्फनेज मोकिले छॾो, असां हेॾे न वेंदासीं, असां हेॾे न वेंदा, पीउ माउ ॾे न वेंदासीं, छो त असां बर्दाश्त नथा करे सघूं त असांजो अधु पेर पीउ ॾे पियो हुजे, अधु पेर माउ जे घर में पियो हुजे, छोकी ॿार जी ज़हनी तवाज़ुन जो करे डिस्टर्ब थो थिए पियो ॾाढो.
1: अच्छा, इन ते तव्हां उन्हनि पेरेंट्स खे छा
0: जेको तव्हांखे जीअं मां शुरूआत हिन सवाल जी जीअं शुरूआत कई त अलाह खे नापसंदीदा अमल आहे तलाक ऐं सेपरेशन. मुंहिंजी सलाह इहा आहे त असां इन खां बि अॻु में पहिरियों बि हज़ार दफ़ा मां ॿुधाए चुको आहियां हिन तव्हांजे मीडियम जे थ्रू, ऐं पाण हिन ते हिकु न ॿ दफ़ा प्रोग्राम करे चुको आहियां अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जो. जॾहिं बि अगरि अहिड़ी को सिचुएशन क्रिएट थिए त मां इहा ई सलाह ॾींदुमि त घर जा जेके वॾा भाती आहिनि दे मस्ट प्ले द रोल ऑफ द मीडिएटर, इन मसले खे रिज़ोल्व करण.
1: अच्छा, हिते अमूमन इहे ॻाल्हियूं चई वेंदियूं आहिनि बाबा तव्हांजो ज़ाल मुंहिंजो पंहिंजो आहे, चकर तव्हां असांखे विच में न आणियो, हिते कंहिंजो कसूर आहे?
0: इहो इहो आहे बेसिकली सुठी ॻाल्हि मूंखे वणी. जॾहिं मौला हज़रत अली खे जॾहिं चवंदा आहिनि की अली सुम्हण खां अॻु में ॿिनि माण्हुनि जे विच में दरमियान में फ़ैसिलो कराए सुम्हिजांइ, त इहे बि माना हिकिड़े क़िस्म सां तुंहिंजे माना अॻिते वञण जा माना ईअं सम्झो माना तुंहिंजे बुलंदी जा माना अञा वधीक बुलंद मक़ाम ते पुॼण जा बि हिकिड़ा ज़रिया आहिनि की अली ॿिनि माण्हुनि जे विच में सलाह करे सुम्हिजांइ. त इन मां अगरि मां नंढड़ो मिसाल वठो, हदीस त इलाही वॾी आहे, हुन में कलम ज़ोन में क़ुर पढ़ण जो बि ज़िकिर आहे, उन में पंहिंजो हे ॿिनि माण्हुनि जे विच में या ॿिनि धुरियुनि जे विच में सलाह करण जो बि ज़िकिर, हदीस तमामु वॾी आहे, नंढड़ो टुकड़ो थो ॿुधायां. त इन मां मुराद छा आहे की अलाह ऐं रसूल खे इहो अमल एॾो पसंदि आहे की कोई माण्हू ॿिनि धुरियुनि खे पाण में ठाहे. ॿिनि धुरियुनि खे ठाहिण जो मतिलबु ॿिनि फैमिलीज़ खे ठाहिण. ॿिनि फैमिलीज़ खे ठाहिण जो मक़सदु आहे लाज़मी आहे त अगरि जहिड़ा न थींदा सुभाणे हिन में ग़लति कम न थींदा, थी सघे थो जहिड़नि जे करे हालात ख़राब थी वेंदा आहिनि, ॿ फैमिलीज़ पाण में विढ़ी वेंदियूं आहिनि, जहिड़ा बि थींदा आहिनि, फुदगियूं बि थी वेंदियूं आहिनि, मार कुट ते बि माण्हू हलिया वेंदा आहिनि.
1: बिल्कुलु,
0: ज़रूरत पवे त अगरि कंहिंखे ज़रूरत पए इंटरफेरेंस करण जी त उहो इंटरफेरेंस करे, त जीअं ॿ घर तबाह न
1: थियनि,
0: ॿ फैमिलीज़ तबाह न थियनि, जीअं उन जे ॿार बचनि जेको नुक़सान न अचे ऐं उहे हिकिड़ी सुठी ऐं पीसफुल ज़िंदगी पंहिंजे अॻिते सफ़र गुज़ारे सघनि.
1: सो देट मीन्स तव्हां हुनखे इहो ई मैसेज ॾींदा, स्पेशली जेके वॾा आहिनि त उहे गैर ज़िमेवार न थियनि, ज़िमेवारी खां भॼनि न, ऐं जेको आहे न पंहिंजो किरदारु अदा
0: करनि. शादियुनि ताईं तव्हां अवेलेबल आहियो, शादियुनि में मौजूदु आहियो, मेहंदियुनि में मौजूदु आहियो, ढोलकियुनि में मौजूदु आहियो, हर शइ में. शादी कराइण बि तव्हांजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, त शादी जे अंदरि थींदड़ जेके इशूज़ आहिनि उनखे रिज़ोल्व कराइण बि तव्हांजो.
1: सो बिल्कुल, प्रोग्राम जारी आहे, हींअर असां हलंदासीं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं, असां सां गॾु रहिजो.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: इट्स 7:30.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: any kind of property, whether movable or immovable, mm-hmm. has been left by the parent of the minor. ठीक आहे उहा प्रॉपर्टी ते हुनजी नज़र न हुजे ठीक सपोज़ जे मां तव्हांखे मिसाल ॾियां अगरि इमोबल प्रॉपर्टी आहे त हुन में तव्हांजा घर बि थी वियो तव्हांजो प्लॉट बि थी वियो तव्हांजी एग्रीकल्चर लैंड बि थी वियो मोबल प्रॉपर्टी इहा हूंदी आहे त सपोज़ किथे ज्वेलरी पई हूंदी आहे किथे अकाउंट में पैसा पिया हूंदा आहिनि किथे बॉन्ड जी शकल में पवंदी छा हुनजी हुन ते ईविल आई त न आहे बुरी नज़र त न आहे सपोज़ को अहिड़ो घर आहे हुनजी गाडियनशिप वठे थो पियो गाडियनशिप वठण खां पोइ ॿार खे त पाण सां राय छॾी पर घर किराए ते ॾेई छॾी उन मां जेको बि कुझु मिले थो उहो पाण वटि रखे थो या अहिड़ो प्लॉट आहे उहो लाइसेंस ऐं लीज़ त न ॾेई छॾी हिनखे तव्हां हाली टेम्परेरी यूस कयो हुन मां जेको बेनिफिट मिले उहो पाण वटि ठीक ऐं हुन खां पोइ इहो आहे की हुन में कैपेसिटी ऑफ माइंड मतिलबु कहिड़े बि क़िस्म जी हुन में मेंटल डिसेबिलिटी न हुजे पंहिंजे डिसीशन्स वठी सघे जेके ॿार जे बि हक़ में सुठा डिसीशन्स हुजनि ऐं ॿार जी बि वेलफेयर में हुनखे फ़ाइदो ॾेई छॾनि छो की 5 खां 6 ॻाल्हियूं इहे आहिनि के मां थोरो शॉर्ट में तकड़ में रिपीट कंदुमि ही शुड नॉट बी इल टेम्पर्ड हुनखे इनकेपेसिटी ऑफ माइंड न हुजे ही शुड हैव नॉट सेल्फ इंट्रस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर ठीक आहे ऐं प्लस में बैड करेक्टर जो न हुजे ऐं सुठे इख़लाक जो हुजे जेको ॿार जी वेलफेयर में मदद ॾे दीस क्वालिटीज़ आर टेकन अंडर सुपरविजन या टेकन अंडर आईस ऑफ द कोर्ट कोर्ट विल कंसीडर इट जॾहिं कोर्ट कंसीडर कंदी हुन खां पोइ वञी करे हुनखे एज़ अ गार्डियन अपॉइंट कंदी
1: ऐं गार्डियन जूं ड्यूटीज़ कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि मतिलबु हू छा जेको आहे माइनर जी जेका कहिड़ी क़िस्म जी वेलफेयर थो करे
0: गार्डियन जी ड्यूटीज़ सभ खां पहिरों बल्कि गार्डियन जी अगरि ॾिठो वञे अंडर गार्डियनशिप एक्ट में ॾिठो वञे त गार्डियन जी टे ड्यूटी बेसिक टे ड्यूटीज़ लिखियल आहिनि सेक्शन में त टे लिखियल आहिनि हुनखे तव्हां इलाही वधाए सघो था या मल्टी हुन में खणी वञी सघो था एरियाज़ में सभ खां पहिरीं आहे स्कूलिंग ॿार जी स्कूलिंग बंदि न थियणु खपे ॿियो आहे ॿार जी हेल्थ ॿार जी जेकी नरिशमेंट आहे ॿार जी जेकी नर्चरिंग आहे ऐं ॿार जी जेकी नेचर ते को फ़र्क़ु न अचे मुंहिंजी हेल्थ सुठी हुजे टियों आहे मेंटेनेंस मेंटेनेंस मतिलबु ॿार खे टाइमली खाधो बि सुठो मिले रहण बि सुठो हुजे ऐं ॿार जा विज़िटेशन बि थींदा रहनि ॿारनि जूं शादियूं फोतियूं गमियूं शादियूं मुरादियूं जेको असां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं पंहिंजी सिंधी लैंग्वेज में उहे ॿार जी प्रॉपर तरीक़े सां थींदियूं रहनि इहे बेसिक जेके ड्यूटीज़ आहिनि कंहिं बि गार्डियन जी के जेसिताईं उहो 18 साल जी एज ते नथो पुॼे तेसिताईं उहो लुक आफ्टर करणु हुनजो फ़र्ज़ु आहे
1: All right, मतलब ये टे तव्हां चओ था बेसिक ड्यूटीज़ एंड गार्डियंस जो ऑल राइट सर डाइवोर्स ते अगरि असां अचूं पिया पेरेंट्स में विच में ख़ुदा न ख़ासि था डाइवोर्स बि थी वञे ऐं जेका त माइनर जी कस्टडी मदर वटि पई अची वञे त जेको फादर आहे उनखे कीअं विज़िटेशन मिली सघे थी या उनखे अलो आहे या न आहे
0: हा वेरी गुड क्वेश्चन बाबा इनखे असां चवंदा आहियूं विज़िटेशन राइट
1: ओके
0: फैमिली लॉ में इनखे विज़िटेशन राइट चओ
1: ॾिनो वियो आहे
0: गार्डियन में बि जो ज़िक्र आहे विज़िटेशन राइट आहे गार्डियन विज़िटेशन जो राइट जो पर्पज़ इहो आहे की पीमा सेपरेट थी विया
1: आहिनि
0: या पीमा फोत थी विया आहिनि हुनजा नेचुरल गार्डियन बि फोत थी विया आहिनि त कस्टडी ॿिए कंहिं वटि वञे थी पई उन टाइम में अगरि सपोज़ कोई ॿार जो ई क्लोज रिलेटिव चए थो बाबा जंहिं वटि कस्टडी आहे जंहिं वटि जेको हुनजो गार्डियन अपॉइंट थियो आहे असांखे ॿार खे असां मिलणु ॾिनो वञे छोकी उहो हाली टेम्परेरी कस्टोडियन आहे
1: ठीकु आहे
0: ठीकु आहे त असांखे इहा ख़बर पई आहे त असांजो जेको ॿारु आहे हुनजी जेकी न जेकी वेलफेयर आहे उहा सही नथी
1: थिए ठीकु आहे
0: काइंडली असांखे ॿार सां मिलणु ॾिनो वञे पोइ हुन में इहो छा थींदो आहे त अगरि सेपरेटिड आहिनि डाइवोर्स्ड आहिनि ॿार हाली यकदमि मां खणी वई पाण सां गॾु पीउ खे न ॾिनई पीउ एप्लीकेशन ॾींदो पेरेंट एप्लीकेशन फादर एप्लीकेशन ॾींदो त मुंहिंजे ॿार खे मूंसां मिलणु ॾिनो वञे अगरि ॿार पेरेंट वटि रहिजी विया आहिनि माउ खे कढी छॾियो अथनि माउ खे कंहिं या हुनजी वालदा खे कहिड़े बि सिचुएशन सां ॿार सिचुएशन खां हुनखे बेदख़ल करे छॾियो अथनि या हुनखे सपोज़ डाइवोर्स मिली वई आहे त उहा लेडी अगरि चाहे त कोर्ट में एप्लीकेशन ॾेई करे विज़िटेशन राइट जो हक़ वठी सघे थी पई ईअं सपोज़ अगरि गुज़ारे वई आहे अगरि लेडी गुज़ारे वई आहे ॿार जा नाना नानी ज़िंदा
1: आहिनि
0: त नाना नानी बि हुनजो विज़िटेशन जो राइट हक़ वठी सघनि था त वाक़ई असांजो जेको ॾोटो आहे या असांजो जेको पोटो आहे वाक़ई उहो सुठी कंडीशन ते आहे या न आहे पोइ इन सिचुएशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी अथॉरिटी आहे 2018 जी उन में सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चवे थी पई त कोर्ट खे हिकिड़ो टेम्पररी ऑर्डर बि इशू करणो आहे अलो बि करणो आहे ऐं प्लस में उनखे मुलाक़ात करण जी इजाज़त बि ॾियणी आहे ऐं पूरो जो पूरो शेड्यूल ठाहे ॾियणो आहे हफ़्ते में सपोज़ शेड्यूल ईअं हफ़्ते में ॿ ॾींहं ॿार पंहिंजी पीउ वटि रहंदो हफ़्ते जा 3 ॾींहं पंहिंजी माउ वटि रहंदो ईद उल अज़हा जी अगर ॾींहुं अचनि था पिया त अगरि 15 रमज़ान पंहिंजे पीउ मां वटि रहंदो 15 रमज़ान पंहिंजे
1: वालदा वटि रहंदो
0: ईद जा टे ॾींहं त ईद जो चंड राति खां वठी करे ईद जे ॿिए ॾींहं ताईं पीउ वटि रहंदो वरी ॿिए ॾींहं खां वठी करे ईद जे टे ॾींहं ताईं पंहिंजी माउ ऐं मदर सां रहंदो ईअं ई अगरि स्कूलिंग आहे स्कूलिंग जी फीस वग़ैरह जेकी बि हूंदी उहा पेरेंट भरंदो
1: ठीकु आहे
0: ऐं उन खां अलावा अगरि ॿार पंहिंजे पीउ ॾे वञणु चाहे त सुबुह जो 8 बजे खां वठी करे शाम जो 5 बजे ताईं हो पंहिंजे पीउ वटि वञी सघे थो ऐं शाम खां बाद में पंहिंजी वालदा
1: वटि वञी सघे थो
0: त कोर्ट इहो छा करे ॾिनो हिकिड़ो पूरो शेड्यूल ठाहे ॾिनो आहे त हिन हिन सिचुएशन खे ॿार खे तव्हां पंहिंजे हस्बैंड खां ऐं हिन खां मिलायो पर असां वटि सिचुएशन छा आहे कॾहिं कॾहिं इलाही केसिस असां बि हलाया आहिनि त घटि परमिशन मिलंदी आहे ॿाहिरि वञण जी जेकी बि विज़िटेशन थींदियूं आहिनि सभु कोर्ट जे अंदरि थींदियूं
1: आहिनि
0: पोइ उते हिकिड़ा विज़िटेशन जे लाइ वार्ड हाउस ठाहिया विया आहिनि जेके चिल्ड्रन हाउस चवंदा
1: आहिनि
0: वार्ड मतिलबु माइनर ॿारनि जा हिकिड़ा नंढा माना हुते हिकिड़ा ई सम्झो कमरा ठाहिया विया आहिनि जिते ॿारनि जा खिलौना ॿार जी हर उहा बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल हूंदी आहे जंहिंमें अगरि माइनर आहे त उहो इंजॉय करे सघे पंहिंजे पेरेंट्स सां पोइ कोर्ट जी तरफ़ां मिसाल सपोज़ 12 बजे खां 2 बजे ताईं या सुबुह जो 9 बजे खां 12 बजे ताईं टाइम मुक़रर हूंदा आहिनि उन दौरान तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे शयूं कपिड़ा खिलौना वठी करे ॾेई छॾियो पोइ उहो पंहिंजे पेरेंट्स सां बाद में जीअं टाइम ओवर थींदो उहो पंहिंजे पेरेंट्स सां खणी हलिया वेंदा सो विज़िटेशन राइट जो पर्पज़ इहो हूंदो आहे टू लुक एट द माइनर इज़ बींग ट्रीटेड वेल ऑर नॉट ॿार पंहिंजी लाइफ खे सही इंजॉय करे थो वेल मैनर्ड आहे वेल मेंटेन्ड आहे बसि पर्पज़ इन जो इहो हूंदो आहे त असां ॾिसूं त ॿार पंहिंजी जाते
1: सही वेलफेयर थी
0: जिते सही आहे या न
1: अच्छा इन ते सर हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन मुंहिंजे ज़हन में अचे पियो त डाइवोर्स खां बाद में जेको आहे त या डाइवोर्स थी चलो बाद में त अचूं कंहिंजी हस्बैंड फादर या मदर जेको आहे त अगरि डेथ थी वञे ऐं मदर वटि ॿार रहियल आहे माइनर रहियल आहे ऐं हू ॿी शादी पई करे वठे ठीकु आहे त सोतेलो पीउ हुन जी सही तरह वेलफेयर कोन थो करे त इन सिचुएशन में माइनर खे जेको आहे त उन वालदा वटि कस्टडी रही सघे थी या उनजे लाइ कोर्ट जेको आहे डिसाइड कंदी त हिन जो कस्टोडियन ॿियो थिए
0: इहो डिपेंड करे थो सपोज़ अगरि छोकिरी आहे अगरि छोकिरी आहे उहा मेजर आहे त उहा गैर महरम आहे पंहिंजे सेकेंड माना मदर जे गैर महरम आहे अगरि उहा चाहे त पंहिंजे वालिद चाहे त उहा कस्टडी वापसि वठी सघे थो अर्ली एज में
1: ॾाॾो
0: या हुनजो चाचो हुनजी कस्टडी वठी सघे थो बाबा हे न्याणी असांखे ॾियो
1: हुनजी
0: परवरिश असां कंदासीं ॿी सिचुएशन में जेकॾहिं कोर्ट कंसीडर करे थी पई जीअं असां ॿुधायासीं क्वालिटीज़ असां ॿुधायासीं त छा क्वालिटीज़ हुजणु खपनि अगरि कोर्ट कंसीडर करे थी ठीकु आहे न इट इज़ ऑब्ज़र्विंग देट अंडर द आई ऑफ द लॉ के अगरि असां मदर आहे हुन ॿी शादी कई आहे पर स्टिल उहो हुनजी सुठी परवरिश करे सघे थो त पोइ हुनखे कोर्ट खे एतिराज़ न हूंदो
1: आहे
0: त बाबा मदर राज़ी आहे मुंहिंजो जेको सेकेंड हस्बैंड आहे उहो राज़ी आहे त मां तव्हांजी न्याणी खे पंहिंजी न्याणी वांगुरु रखां त अल्टीमेट पर्पज़ छा हिन एक्ट जो टू वेलफेयर ऑफ द माइनर जेसिताईं ॿार जेसिताईं उहो एडल्ट थी थिए या एडल्टहुड खां पोइ हुन जा पंहिंजा डिसीशन्स आहिनि हुनजी स्कूलिंग प्रोवाइड करनि था पिया हेल्थ हुननि जी सुठी रखनि था पिया हुननि जी छा चवंदा आहिनि इहो मेंटेनेंस हुन अगरि ॿार जी सुठी आहे त हुन खां बेस्ट ऑप्शन ॿार लाइ त कुझु न छो की सोल पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट इज़ फॉर द वेलफेयर
1: ऑफ द माइनर
0: ई ॿार खे हर तकलीफ़ खां बचाइणो आहे ॿार खे सुठी परवरिश ॾियणी आहे द सोल पर्पज़ ऑफ दिस
1: जिते बि हुनजी कस्टडी
0: ॾिठो वञे अगरि सपोज हाणे कंहिंजी धीअ शादी थी वई आहे सेपरेट थी विया आहिनि हाणे हस्बैंड जो उहो करेक्टर ई न आहे हस्बैंड जे मोरल एक्टिविटीज़ में आहे हस्बैंड जुआरी आहे हस्बैंड शराब थो पीए पियो
1: हस्बैंड जो
0: सोर्स ऑफ इनकम ई न आहे हाणे तव्हां तव्हांखो हिकिड़ो जनरल सवाल थो सिटीज़न छा तव्हां हलो कंदो कंहिंखे
1: न बिल्कुलु बि न कंदो
0: भले न्याणी
1: आहे
0: भले पीउ हुनजी धीउ
1: आहे
0: पर द करेक्टर ऑफ द पर्सन इज़ सो बैड वट काइंड ऑफ डिसीशन यू आर गोइंग टू टेक
1: एग्जैक्टली नॉट
0: तव्हां छा कंदो एट दैट सिचुएशन तव्हां फेवर ई ॾींदो की बाबा लेट द माइनर बी रिमेन विद द मदर अगरि हुनखे सुठो एनवायरमेंट मिले थो पियो सुठो घर मिले थो पियो सुठी स्कूलिंग मिले थी पई that is a very good thing for the minor ke ultimate sole purpose unjo serve to the
1: welfare the
0: so that is a reason ke depend kare to what kind of situations are there when the appointment of the guardianship is being considered
1: all right sir section 19 of the act jeko ata che unme aaye the guardian jeko ata not appointed by the court inenge thodo define kanda ta hi section chapo che exactly
0: हिन जो पर्पज़ हिन सेक्शन जो पर्पज़ इहो आहे की हाणे लिखियलु आहे त गॉड इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द कोर्ट हिन जा सिर्फ़ चार इनग्रीडियंट्स आहिनि. सभ खां पहिरियों इहो आहे, सपोज कि अगरि ॿार जेको वार्ड आहे उनजी सॼी जी सॼी जेकी वेलफेयर आहे उहा स्टेट पाण थी खणे. स्टेट जो मतिलबु आहे कोर्ट, वार्ड कोर्ट उहा पाण थी खणे, प्रॉपर्टी जी बि हुनजी पंहिंजी बि. त हिन सिचुएशन में नो नीड टू अपॉइंट द गार्डियन, छोकी कोर्ट पाण जी ज़िमेदारी खणे थो. हुनजी जेकी बि वेलफेयर आहे उहा कोर्ट जी ज़िमेदारी आहे. ठीकु आहे, देन ॿार एडल्ट, ॿार मेच्योर थी वियो आहे, वॾो थी वियो आहे, ॿार सोच सम्झ वारो थी वियो आहे, पंहिंजी प्रॉपर्टी खे या पंहिंजे वाले साहब जी तरफ़ां, मदर जी तरफ़ां, फैमिली जी तरफ़ां अगरि उहो ज़िमेदारी पाण, डिसीशन्स पाण वठी सघे थो, त पोइ हुनजी गार्डियन अपॉइंट करण जी ज़रूरत न. टियों इहो आहे कि अगरि ईअं सम्झो कि हिकिड़ी नाबालिग नियाणी आहे, अंडर 15, अंडर 17, अमूमन तां रूरल एरियाज़ में ॾिठा हूंदा अर्ली चाइल्ड मैरिज शादी जो कॉन्सेप्ट आहे, 15 सालनि में, 16 सालनि में ॿार शादी कराए छॾंदा, बट द पेरेंट्स हैज़ बीन सेपरेटेड या शी हैज़ बीन ऑर्फन, वीचारी यतीम थी वई आहे. त इन सिचुएशन में उनजी शादी थी वई आहे, त अगरि हसबेंड उन करेक्टर से बीठल आ, जेके असां अर्ली में डिस्कशन किया से, कोर्ट अपॉइंट कंदी त गार्डियन जा करेक्टर कहिड़ा हुजनि, इल मैनर्ड न हुजे, मेंटली चैलेंज न हुजे, कोई डिसेबिलिटी न हुजेसि, कैपेसिटी ऑफ माइंड हुजेसि, माना सोच समुझ ज़िंदगी जा सुठा फ़ैसिला करे सघे, ठीकु आहे, ऐं सुठे इख़लाक जो हुजे, ठीकु आहे. त उन सिचुएशन में नो नीड टू अपॉइंट अनदर गार्डियन, जेको मुंहिंजो हसबैंड पाण ई कोर्ट सम्झे थी, तुंहिंजो हसबैंड पाण ई बहितरीन गार्डियन आहे पंहिंजी वाइफ जे लाइ, त हिन सिचुएशन में कोर्ट गार्डियन अपॉइंट न कंदी आहे. चोथों पॉइंट इहो आहे बाबर, के ॿिन्हिनि मां कोई बि अगरि पेरेंट आहे, पेरेंट्स में ज़िक्र मां कयो अगरि मादर आहे या मदर आहे या फादर आहे, ॿिन्हिनि मां कोई बि हयात आहे त हुनजा बेस्ट डिसीशन वठी सघे थो. अगरि फादर हयात आहे त मदर बेस्ट गार्डियन आहे, अगरि मदर न आहे त फादर इज़ द बेस्ट गार्डियन. सो दीज़ आर द फोर कंडीशन जंहिंजे विच में कोर्ट को नयो गार्डियन अपॉइंट नथी करे सघे.
1: ठीकु आहे, सो सर सेक्शन 20 जेको आहे त फिड्यूशरी रिलेशन ऑफ गार्डियंस टू वॉट आहे, एज़ वेल एज़ सेक्शन 25 बि आहे, इन ते तव्हां थोरो असांखे डिफाइन कंदा.
0: फिड्यूशरी जो मतिलबु आहे इतमादी रिलेशनशिप.
1: ऑल राइट,
0: इतमादी जो मक़सदु इहो आहे कि कोर्ट कंहिं बि गार्डियन खे को प्रॉपर्टी सां रिलेटेड इशूज़ हुजनि कंहिंजी माइनर सां, उन में काई बि ट्रांसेक्शन थिए थी, उहा ट्रांसेक्शन अल्टीमेट ॿार जे ई फेवर में हुजे. अगरि कोई मूवे प्रॉपर्टी आहे, कोई प्रॉपर्टी रेंट ते ॾिनल आहे या प्लॉट आहे, अगरि प्लॉट सेल आउट बि करणु चाहिनि था त परमिशन लाज़मी आहे. उहा परमिशन कोर्ट ई ॾींदी परमिशन, पर इहो ज़रूरु ॾिसंदी त छा उनजो बेनिफिट, उन ट्रांसेक्शन जो बेनिफिट माइनर ताईं पुॼे थो. अगरि जो बेनिफिट माइनर ताईं पुॼे थो पियो ऐं उहा ॿार जे हक़ में ॻाल्हि वञे थी, त उन रिलेशन खे चइबो आहे फिडिशरी रिलेशनशिप. माना कोई बि अहिड़ो ट्रांसेक्शन कहिड़े बि क़िस्म जो जेको घुमी फिरी ॿार खे ई फ़ाइदो ॾिए, ठीकु आहे, ऐं उनजी जेतिरी बि वॉर्ड आहे, जेतिरी बि उनजी प्रॉपर्टी आहे, उनजी लुक आफ्टर करे बहितरीन तरीक़े सां, उन पॉइंट खे असां चवंदा आहियूं फिड्यूशरी रिलेशनशिप, के गार्डियन उनजी हर हिकु पॉइंट, हर हिकु उनजी प्रॉपर्टी खे ईअं लुक आफ्टर करे, ईअं ट्रांसेक्शन्स खे ॾिसे, जीअं हू पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी में, पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी जा फ़ैसिला वठंदो आहे, पंहिंजी ज़ाती प्रॉपर्टी जा फ़ैसिला वठंदो आहे, ऐं जीअं ज़ाती अमल कबो आहे कि हिन सां मूंखे फ़ाइदो पुॼंदो, उनजा सॼा डिसीशन ईअं हुजनि जो पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी जा फ़ैसिला वठी, पर अल्टीमेट फ़ाइदो कंहिं खे थिए, माइनर खे थिए.
1: ऑल राइट, सो सर नाउ लेट टॉक अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन अंडर सेक्शन 40. वॉट इज़ दिस?
0: तव्हां हिकिड़ो ॿियो 25 पुछियो मूंखां.
1: जी 25 बि पुछियो.
0: सेक्शन 25, सेक्शन 25 खे अगरि असां डिफाइन कयूं, सेक्शन 25 जो मक़सदु इहो आहे कि अगरि को पेरेंट या कोई बि लीगल गार्डियन नेचुरल हुजे या डिफेक्टो हुजे या टेस्टामेंट्री हुजे, अगरि उहो वठणु चाहे ॿार खां, कंहिं वटि सपोज हिकिड़ी टेम्पररी कस्टडी आहे, जेको पाण डिस्कशन टेम्पररी कस्टडी आहे, अञा कोर्ट कंहिंखे ॾिनी न आहे, अगरि उहो वठणु चाहे थो त भई हे ॿार जी जेकी कस्टडी आहे मूंखे ॾिनी वञे, छोकी मुंहिंजो जेको ॿारु आहे, जेको माइनर आहे, जंहिं वटि आहे उते प्रॉपरली ट्रीटेड नथो थिए पियो.
1: ओके,
0: ठीकु आहे, उनखे उन ॿार खे न उहा नरिशमेंट आहे, न उन ॿार खे उहा एजुकेशन आहे, न उन ॿार खे उहा स्कूलिंग आहे, न उन ॿार खे उहो जेको माहौल मिले थो, एनवायरमेंट मिले थो, जंहिंमें उहो सुठे तरीक़े सां बा इख़लाक हिकिड़ो माण्हू ऐं हिकिड़ो बहितरीन सिटीज़न थी सघे थो. उन सिचुएशन में 25 दाख़िल कंदा आहियूं कि कोर्ट कस्टडी छा कंदो आहे, चाहे अगरि पेरेंट आहे, मदर आहे, सपोज उहा ज़िंदगी नथी ॾेई सघे त उहा वठी करे पीउ जे हवाले करे वेंदा आहिनि, अगरि पीउ आहे उहा ज़िंदगी नथो ॾेई सघे त उहा माउ जे हवाले करे वेंदी. सेक्शन 25 is about that.
1: Okay.
0: And discharge, डिस्चार्ज ऐं सीसेशन खे मां हिकिड़ी कैटेगरी में रखंदुमि.
1: ठीकु आहे.
0: डिस्चार्ज जो मतिलबु आहे माना पंहिंजे कम खां फारिग थी वञणु.
1: ओके.
0: सीसेशन में इहो हूंदो आहे त अगरि सपोज़ कोई बि कोर्ट कंहिंखे बि पंहिंजो गार्डियन अपॉइंट करे थी ॿार जो, त अगरि उहे कंडीशन्स फुलफिल थी थी वञनि त ऑटोमेटिक ई जेकी कंडीशन आहे गार्डियनशिप जी उहा टर्मिनेट थी थी वञे.
1: ठीकु आहे.
0: जंहिंमें अगरि मिसल ॿार आहे, बालिग आहे, ॿार आहे, बालिग थी वियो, ठीकु आहे, गार्डियन
1: आहे,
0: उहो नेचुरल डेथ करे गुज़ारे वियो, या माइनर आहे वीचारो 18 ताईं पुॻो ई न डेथ करे वियो, ठीकु आहे, त इन सिचुएशन में छा थींदो आहे त असां हिनखे डिस्चार्ज चवंदा
1: आहियूं. ओके.
0: ॿियो इहो डिस्चार्ज जो मक़सदु इहो हूंदो आहे जेके असां सीसेशन चवंदा आहियूं. डिस्चार्ज ऐं सीसेशन टर्म्स अलॻि अलॻि लिकल आहिनि गार्डियंस में, पर अगरि जेके तत खणंदासीं, समरी खणंदासीं, तव्हांखे साॻी मिलंदी. ॿियो कोर्ट डिसाइड करे की जेको गार्डियन आहे उहो गार्डियन उन क्वालिफिकेशन से बीठो या न बीठो. अगरि उन क्वालिफिकेशन से बीठो आहे त हुनखे कंटिन्यू रखंदे. अगरि उन जेके असां प्रीवियसली क्वालिफिकेशन ॿुधायूं से, अगरि उन खां डाइवर्ट थी वियो आहे त ऑटोमेटिक ई उन जी गार्डियनशिप खे डिस्चार्ज करे दे विल अपॉइंट द न्यू गार्डियंस. सो सीसेशन एंड द डिस्चार्ज आर द सेम थिंग. बाक़ी रही तव्हांजे रिमूवल ऑफ द गार्डियन. रिमूवल ऑफ गार्डियन में ईअं सम्झो के माइनर आहे, उन ते ज़ुल्म कयो थो वञे, माइनर कंप्लेन करे थो मूंखे पढ़ाई जी जॻह ते मूंखां जेको आहे न ॿिया ग़लति कम था वरिता वञनि. ठीकु आहे. सपोज़ अगरि असां पंहिंजे माहौल जी रियलिटी अगरि असां माहौल में थोरो ॻाल्हायूं, हूंदो न, मूंखे नथो लॻे ईअं न हूंदो, अलाह करे ईअं न हुजे. कुझु माण्हू छा कंदा आहिनि, ॿार जी कस्टडी वठी करे उन मां जेको बि उन्हनि खे मिलंदो आहे प्रॉपर्टी जे पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे उहो मुअबल हुजे या मुअबल हुजे, कुझु बि मिलंदो आहे, उहो सेल्फ इंट्रेस्ट जे करे ॿार खे अडॉप्ट करे छॾंदा. पोइ बाद में उन ॿार खे माना ग़लति तरीक़े सां इस्तेमालु करणु या अॻिते सेल आउट करे छॾणु या हुनखे
1: बॉलीवुड जी हिकिड़ी मूवी बि असां ॾिठी आहे. अच्छा अच्छा. जंहिंमें ईअं आहे त प्रॉपर्टी जी वजह सां जेका आहे त हुनजी केयर कई वेंदी
0: आहे. अच्छा अच्छा.
1: हुनखे मतिलबु एजुकेशन बि न ॾिनी वेंदी
0: आहे.
1: देन आफ्टर जेको आहे त आफ्टर 18 हुन खां जो आहे सॼी प्रॉपर्टी पंहिंजे नाले
0: खे. माना मिसाल आहिनि न, त असल में असांजी जेकी मूवीज़ उहे बि रियल लाइफ खां इंस्पायर्ड. कुझु माण्हू छा कंदा आहिनि हुनजी प्रॉपर्टी ते, असां हुनखे चवंदो सेल्फ इंट्रेस्ट, ॿार खे पालींदा त आहिनि, पर पर्पस छा हूंदो आहे त जीअं हे वॾो थिए त असां हुनखे एतिरो पाले रखूं जीअं वॾो 18 जो थिए त असां सॼी प्रॉपर्टी पंहिंजे नाले ते कराए
1: छॾूं.
0: सो अगरि उन कंडीशन ते अगरि कोर्ट अगरि कंसीडर कंदी त अगरि जेकी गार्डियन अपॉइंट थियल आहे उन मेनर ऐं उन प्रिस्क्रिप्शन से नाहे बीठो जेके प्रिस्क्राइब थियल आहिनि, ठीकु आहे, उन प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में नाहे, उन प्रिस्क्राइब्ड मेनर में नाहे
1: बीठो,
0: त कोर्ट छा कंदी, उनखे रिमूव करे छॾंदी, टर्मिनेट करे छॾंदी, उन जॻह ते ॿिए कंहिंखे गार्डियन अपॉइंट कंदी.
1: ठीकु आहे. सो सर, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे. तमामु सुठी असां गुफ़्तगू कईसीं अबाउट द टॉपिक गार्डियन एंड गॉड्स एक्ट. सो लास्ट में तव्हां कहिड़ो असांजे जेका व्यूअर्स खे पैगाम ॾियणु चाहींदा अबाउट दिस एक्ट एंड एज़ वेल एज़ जेके जिते बि तव्हां सम्झो पिया, जीअं तव्हां ई पंहिंजी गुफ़्तगू में इहा ॻाल्हि कई त माइनर्स खे जेको आहे सही तरह ट्रीट न कयो वेंदो आहे कुझु कस्टोडियन पारां, उन्हनि खे कहिड़ो तव्हां मैसेज ॾियणु चाहींदा?
0: मुंहिंजो मैसेज सिर्फ़ु पेरेंट्स खे इहो हूंदो की ख़ुदा कॾहिं बि घर में मामला अहिड़ा थियनि त ॻाल्हियुनि खे मसइलनि खे ठाहियो, जहिड़ा थींदा रहंदा आहिनि हर घर में जहिड़ा थींदा आहिनि, पर हर जहिड़े जो सल्यूशन कोर्ट न आहे. असां त वकील आहियूं, ठीकु आहे, असां हिन सिचुएशन खे ॾिसूं था पिया. इवन एज़ अ वकील, एज़ अ जज, असांजी इहा ई मेन जेको पर्पज़ हूंदो आहे की पाण में ठही वञनि.
1: सही.
0: जॾहिं बि कंहिं कोर्ट में को केस ईंदो आहे त आई एम द सोल विटनेस ऑफ दैट थिंग, के जज हिकिड़ा हूंदा न 100%. मां ॾिठो आहे जजिस खे, उहो 100 न 1000% जेको आहे न एफर्ट्स ॾींदा आहिनि त हे पेयर ठही वञे पाण,
1: ऑलराइट,
0: हे जोड़ो ठही वञे. लास्ट खां लास्ट जज पेन घुमाइण खां अॻु में, डाइवोर्स, तलाक, कुल्ला माना डिक्लेयर करण खां अॻु में, मां जजिस खे ॾिठो आहे के एॾो त राज़ी कंदा आहिनि, माना अलाह जी हदीस सां, रसूल जी हदीस सां, अलाह जूं आयतूं, वलिन जा मिसाल, आइमा जा मिसाल, दुनिया में थींदड़ मुश्किलातूं, पेरेंट्स जे ॿारनि जे मथां ईंदड़ मुश्किलातूं, जज न वेठो हूंदो आहे, ईअं लॻंदो आहे ॼण घर जो भाती वेठो आहे.
1: सही.
0: उहो घर जो वॾो वेठो आहे, उहो एॾो कोशिशि कंदो आहे पाण में ठही वञनि. डिसीशन कहिड़ो बि अचे उहो असां पाण में न ठहंदासीं, उन खां पोइ बि जज छा कंदा आहिनि, बाबा ठही अचो.
1: सही.
0: तारीख़ मिली वेंदी आहे, वरी तारीख़ मिलंदी आहे. मां पाण पंहिंजी अखियुनि सां ऐं पंहिंजे सां पाण कंहिं फ़ैसिले में 3-3 तारीख़ूं बि वरितियूं आहिनि, 2-2 तारीख़ूं वरितियूं आहिनि. जजिस इन करे चवंदा आहिनि ठही अचो. जॾहिं ॾिसंदा सिचुएशन वर्स्ट आहे, नथा ठहनि देन जजिस छा कंदा आहिनि मजबूर थी करे अनाउंसमेंट प्रोनाउंस करे छॾंदा डिसीशन. बहरहाल मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे की अगरि को ॿार सपोज छोकी रसूल पाक बि फरमायो आहे न की अगरि यतीम जी कोई परवरिश कंदो हुनजी सार संभाल लहंदो त क़यामत में मूंसां ईअं बीठो हूंदो जीअं ॿ आङरियूं इशारो करे ॿ आङरियूं जीअं हिननि में को दरमियानी गैप न आहे ईअं क़यामत में मूंसां गॾु बीठो हूंदो. अगरि तव्हांखे कंहिं बि ॿार जी गार्डियन या कंहिं बि ॿार जी कस्टडी मिले थी उनखे ईअं पालियो जे पंहिंजो बचो सम्झी करे
1: बिल्कुलु एग्ज़ैक्टली
0: हुनजी प्रॉपर्टी ते या उनजी कंहिं बि शइ ते तव्हांजी नज़र न हुजे. कंहिं यतीम खे पालण कंहिं यतीम जी परवरिश करण ऐं वक़्त लेखण बहितरीन इंसान थो थी वञे इहो सदिकाए जारी आहे. इन खां वधीक इंसान लाइ छा खपे जेको रसूल सां क़यामत वारे ॾींहुं खुले हिननि में को दरमियानी गैप न आहे ईअं क़यामत में मूंसां गॾु बीठो हूंदो. अगरि तव्हांखे कंहिं बि ॿार जी गार्डियन या कंहिं बि ॿार जी कस्टडी मिले थी उनखे ईअं पालियो जे पंहिंजो बचो सम्झी करे
1: बिल्कुलु एग्ज़ैक्टली
0: हुनजी प्रॉपर्टी ते या उनजी कंहिं बि शइ ते तव्हांजी नज़र न हुजे. कंहिं यतीम खे पालण कंहिं यतीम जी परवरिश करण ऐं वक़्त लेखण बहितरीन इंसान थो थी वञे इहो सदिकाए जारी आहे. इन खां वधीक इंसान लाइ छा खपे जेको रसूल सां क़यामत वारे ॾींहुं खुले
1: हे
0: त लाइव असांजो वञे थो पियो अलहमदिल्ला.
1: हिन
0: लाइव प्रोग्राम में बि मूंखे तमामु मज़ो ईंदो
1: आहे.
0: तमामु तमामु बहितरीन तव्हां रोल प्ले था कयो पिया नॉलेज ॾियण में ऐं मां ॿुधण वारनि खे चवंदुमि की
2: सचल की सर मस्त धरती
3: फातिए मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज.
4: छा तव्हांजो ख़्वाब आहे डॉक्टर
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
6: मरियल में पार्टी इजलास के खिताब कंदे नवाज शरीफ चयो त आज़ाद कश्मीर चूंडुनि जे ॿिनि मरहलनि में नून लीग कामयाबी हासिल कई आहे. जहिड़ीअ तरह पंजाब तब्दील थी रहियो आहे अहिड़ीअ तरह आज़ाद कश्मीर खे बि तब्दील थियणु घुर्जे. नू लीग डिलीवर न कयो त हितां जो अवाम नाराज़ थींदो. खैबर पख़्तूनख़्वा जे वॾे वज़ीर जो वफ़ाकी मालियाती मुंतकिले में 6.40 अरब रुपया ॾियण खां इनकार. सोहेल आफ़रीदी चयो त वफ़ाकी हुकूमत बजेट खां पहिरियां ॿियनि सूबनि जीअं KP खां बि वाधू रक़म जी घुर कई हुई. उन्हनि वाधू रक़म जी फरहमीअ खे PTI बानीअ सां मुलाक़ात संदसि इजाज़त सां मशरूत कयो हो. ज़िम थियल ज़िलनि खे 11 क़ौमी मालियाती कमीशन में आइनी ऐं जाइज़ हिसो ॾियण बि शर्त हो. बानी सां मुलाक़ात न कराइण ते ख़ैबर पख़्तूनख़्वा वाधू रक़म जे मफ़ामती यादाश्त नामे ते सही न कई. عوام سمری ملک میں نواں صوبہ چاہے تو سیاستدان چودھری تھن بدرا عوام جا مسئلہ حل کن. چینی صوبن کے چین انتظامی یونٹس میں ورائن میں کو حرج نہ ہے. وفاقی وزیر علیم خان پنج بیان میں چیو ہے تو سیاستدان ذمہ واری کھنندے نون صوبن جی اونرشپ کھنن. نون صوبن جو قیام قومی مسئلہ ہے سیاست جے ور نچاڑیو ونجے. موجودہ حالتوں ملک میں نئی ورکنگ آرڈر جو گھرجاؤں جن میں کو بھی شک نہ ہے. KP میں ہزارہ صوبے جو مطالبہ نون آئے

0: ऐं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो आबनाह हुर्मुज़ खे जल्द अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान। न्यूयॉर्क में तकरीब खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर चयो त ईरान ते मुआशी दबाव विझी जंग ख़तमु करण ते मजबूर कंदासीं। जल्द आबनाह हुर्मुज़ खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो बि ऐलान कंदुसि। वाइट हाउस आबनाह हुर्मुज़ बाबति सदर ट्रंप जे बयान खे मज़ाक करार ॾेई छॾियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम। 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन।
4: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल। 0300-320-4372 और 0242-460100।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 आई 0242-460100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई

0: दा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
1: दा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न दा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
1: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
2: ऑफिस जी मेरा पर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़
1: के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आजाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है और उसके अंदर इस तरह के जरासीम मगर दाखिल हो जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये हारना जीतना तो किस्मत की बात होती है और फिर उनकी शिकायतें जो हैं वो मेरे ख्याल है कि किसी वक्त बैठ के जरूर सुनेंगे।
2: सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जे। कुछ शिकायतूं असां ताईं पहुतियूं जंहिं ते अफ़सोस थियो आहे। उमेद न हुई त पीपल्स पार्टी तरफ़ा को शिकायत जो मौक़ो मिलंदो। शहबाज शरीफ जी महिनत रंग ॾेखारे रही आहे, मुल्क तरक़ी करे रहियो आहे। मरीअ में पार्टी इजलास खे ख़िताब कंदे नवाज़ शरीफ़ चयो त आज़ाद कश्मीर चूंड जे ॿिनि मरहलनि में नून लीग कामयाबी हासिलु कई आहे। जहिड़ी तरह पंजाब तब्दील थी रहियो आहे, अहिड़ीअ तरह आज़ाद कश्मीर खे बि तब्दील थियणु घुर्जे। नून लीग डिलीवर न कयो त हितां जो अवाम नाराज़ थींदो। खैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर जो वफ़ाक़ी मालियाती मुंतक़िले में 6.40 अरब रुपया ॾियण खां इनकार। सोहेल आफ़रीदी चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत बजेट खां पहिरियां ॿियनि सूबनि जीअं KP खां बि वाधू रक़म जी घुर कई हुई। हुननि वाधू रक़म जी फरहमीअ खे PTI बानी सां मुलाक़ात ऐं संदसि इजाज़त सां मशरूत कयो हो। ज़िम थियल ज़िलनि खे 11 क़ौमी मालियाती कमीशन में आइनी ऐं जाइज़ हिसो ॾियण बि शर्त हो। बानी सां मुलाक़ात न कराइण ते खैबर पख़्तूनख्वा वाधू रक़म जे मुफ़ाहमती यादाश्त ते सही न कई।

0: आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी ए भारतीय फौज जो गठजोड़ बेनकाब कश्मीरन पारा इंतशारी कमेटी जो बयानियों रद्द करण बाद सहूलतकार भारतीय फौज खुलियल तौर सामू अची वही। भारतीय फौज पाकिस्तान मुखालिफ जज्बा भड़कण लाए पर केरन सेक्टर में वरिन स्क्रीन से वीडियोज हलए छड़ियों। वायरल मूजिब भारतीय फौज वालारल कश्मीर में थींदड़ जुल्म लिकाइण लाए वीडियो जरिए कूड़ी प्रोपेगेंडा कर रही है। आज़ाद कश्मीर वासिन भारतीय प्रोपेगेंडा रद्द कर छड़ी है। कराची की अदालत में नौजवान व्यापारी मीर रजा केस की बुधनी अदालत पारा जांच में सुस्ती ते गणती जाहिर 24 अगस्त ताईं जांच मुकम्मल करे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत रिमार्क्स डींदे चयो तो वालिद खानदान ए शहरी परेशान आहिन एक मानू जो कत्ल थियो आहे जांच करे हकीकतूं सामू आणियो। अदालत मीर रजा के भाईवार मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 10 डींहनि जी वाध करे छॾी। पुलिस सां जांच में सहकार करण जी हिदायत। वकील जिब्रान नासिर चयो तो मीर रजा के कातिलनि जी गिरफ़्तारी चाहियूं था। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ पलीजो के NCCI पारा जारी कल सवालनामो KTN न्यूज हासिल कर वरतो। मजमूई तौर से अयाज लतीफ पलीजो का 19 सवाल कया वया। अयाज लतीफ पलीजो के NCCI पारा जवाब जमा कराने लाए 24 कलाकन जो वक्त दिनो वयो। दुनिया के कें भी मुआशरे औरत के महकूम रखी तरक्की ना कई आइन पाबंद बनाए तो मुल्क में हर शहरी जहा हक बराबर आन औरतुन के बाख्तियार बनाने तीन तरक्की मुमकिन ना। आर्ट्स काउंसिल कराची में 9 वेमन लॉ कॉन्फ्रेंस के खिताब कदे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत चो तो इंसानी हकन के हर मुआशरे में अहम समझो वो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नस्त रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
6: शाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0304-5416-456
7: اسلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
7: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
9: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
7: مجھے دکان جی بے ڈرندی
8: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
9: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 0301-399-2836

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: अफसोस है, उम्मीद नहीं थी कि पीपुल्स पार्टी की तरफ से जिनकी हुकूमत थी, जिनका वजीर आजम था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। मुखालफीन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आजाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है और उसके अंदर इस तरह के जरासीम मगर दाखिल हो जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये हारना जीतना तो किस्मत की बात होती है और फिर उनकी शिकायतें जो हैं वो मेरे ख्याल है किसी वक्त बैठ के जरूर सुनेंगे।
1: सियासी मुखालफत दुश्मनी में तब्दील न थियण घुर्जे। कुछ शिकायतूं असां ताईं पहुतियूं जंहिं ते अफ़सोस थियो। उमेद न हुई त पीपल्स पार्टी तरफ़ां को शिकायत जो मौको मिलंदो। शहबाज शरीफ जी महिनत रंग ॾेखारे रही आहे, मुल्क तरक़ी करे रहियो आहे। मरी में पार्टी इजलास खे ख़िताब कंदे नवाज़ शरीफ चयो त आज़ाद कश्मीर चूंडनि जे ॿिनि मरहलनि में नून लीग कामयाबी हासिल कई। जहिड़ीअ तरह पंजाब तब्दील थी रहियो आहे, अहिड़ीअ तरह आज़ाद कश्मीर खे बि तब्दील थियणु घुर्जे। नून
2: ख़बरदार, मार्केट में बे इंतिहा जाली डीएपी भाण मौजूद।
1: खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर जो वफाकी मालियाती मुंतकिले में 6 अरब 40 करोड़ रुपया देने का इनकार। सोहेल आफरीदी चयो तो वफाकी हुकूमत बजट का पैरियां बिन सूबन जिया केपी का भी वाधू रकम की घुर कई हुई। उन्होंने वाधू रकम की फरहमी के पीटीआई बानी से मुलाकात संदस इजाजत से मशरूत किया हो। ज़िम थियल ज़िलन के 11 कौमी मालियाती कमीशन में आइनी है जायज़ हिस्सो दियण भी शर्त हो। बानी से मुलाकात न करण ते खैबर पख्तूनख्वा वाधू रकम की मुफाहमती याददाश्त नामे ते सही न कई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ चयो आहे त नू लीग गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती पार्टी न हुजण बावजूद पीपुल्स पार्टीअ खे हुकूमत ठाहिण जी दावत ॾिनी, पर अफ़सोस आहे जो हुननि आज़ाद कश्मीर में दांधली जा कूड़ा इल्ज़ाम मड़िया। गिलगित बल्तिस्तान में खटण ते दांधली जी ॻाल्हि न थी ऐं आज़ाद कश्मीर में हाराइण ते दांधली जा इल्ज़ाम मड़िया विया। मरी में नू लीग आज़ाद कश्मीर जे पार्लियामानी पार्टी इजलास खे ख़िताब कंदे मरियम नवाज़ चयो त आज़ाद कश्मीर जी आवाम ॾुखियुनि हालतुनि में बहितरीन फ़ैसिलो करे नू लीग खे कामयाबु कयो। लफेड़ कतलेआम रतोछाण एहतजाज ऐं हड़तालनि खे वोट जी ताक़त सां शिकस्त मिली। जेतिरियूं साज़िशूं नू लीग जे ख़िलाफ़ थियूं शायदि ई कंहिं ॿी पार्टी ख़िलाफ़ थियूं हुजनि।